ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن

إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا.

तो जिस पर चाहता है उसको बरसा देता है और जिससे चाहता है हटा रखता है, और बादल में जो बिजली होती है उसकी चमक आंखों को खीरा करके बीनाई को उचके लिए जाती है। अल्लाह ही रात और दिन को बदलता रहता है। अहले बसारत के लिए इसमें बड़ी इबरत है। और अल्लाह ही ने हर चलने फिरने वाले जानदार को पानी से पैदा किया, तो उनमें से बाज ऐसे हैं कि पेट के बल चलते हैं, और बाज ऐसे हैं जो दो पांव पर चलते हैं, और बाज ऐसे हैं जो चार पांव पर चलते हैं। अल्लाह जो चाहता है पैदा करता है, बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। हम ही ने रोशन आयतें नाजिल की हैं, और अल्लाह जिसको चाहता है सीधे रास्ते की तरफ हिदायत करता है।

0: न तो अंधे पर कुछ गुनाह है और न लंगड़े पर और न बीमार पर और न खुद तुम पर कि अपने घरों से खाना खाओ या अपने बाप दादा के घरों से या अपनी माओं के घरों से या भाइयों के घरों से या अपनी बहनों के घरों से या अपने चचाओं के घरों से या अपनी फूफियों के घरों से या अपने मामुओं के घरों से या अपनी खालाओं के घरों से या उस घर से जिसकी कुंजियां तुम्हारे हाथ में हों या अपने दोस्तों के घरों से। और इसका भी तुम पर कुछ गुना नहीं कि सब मिलकर खाना खाओ या जुदा जुदा। फिर जब घरों में जाया करो तो अपने घर वालों को सलाम किया करो, ये अल्लाह की तरफ से मुबारक और पाकीजा तोहफा है। इस तरह अल्लाह अपनी आयतें खोल खोल कर बयान फरमाता है ताकि तुम समझो।
1: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم।
0: मोमिन तो वो हैं जो अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान लाए और जब कभी ऐसे काम के लिए जो जमा होकर करने का हो पैगंबर के पास जमा हो तो उनसे इजाजत लिए बगैर चले नहीं जाते। ऐ पैगंबर, जो लोग तुमसे इजाजत हासिल करते हैं वही अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान रखते हैं। सो जब ये लोग तुमसे किसी काम के लिए इजाजत मांगा करें तो इनमें से जिसे चाहा करो इजाजत दे दिया करो और इनके लिए अल्लाह से बख्शिश मांगा करो। कुछ शक नहीं कि अल्लाह बख्शने वाला है मेहरबान है।
1: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
3: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
3: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
5: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तयाब आई।
4: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
5: राबते लाए प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372
6: मां खाधो गरम करे थी वठा
7: पुद थकल थकल पे लगे घणी खरेता
6: तवा जे पुट सुमई न थो पूरी रात मां त खीर प्यारे प्यारे थकी थी पवा
8: मेरी थकल को भी तेरे
7: तू हाल वे मां चाहतो हाल तू

0: हे वट एड़ी शयूं खांदी कर सेहत ठीक रहंदी
1: तवा खाओ
0: ना ना तू खा तू ना खांदी त मां के खाइंदम
2: तेरा ख्याल मेरी जिंदगी का सबसे
3: खीर पीरण वाली माओ जी बेहतरीन गिजा मां ए बार इन्हीं जो हक है ही पैगाम कश फाउंडेशन ए कैनेडियन गवर्नमेंट जी तरफा पेश
4: क्या देख रहे हो ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार साथ ही मोटरसाइकिल्स स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस इन भाई साहब की तरह बड़ा बैंक अलबीब ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं तो भाई साहब क्या समझे
5: बैंकल हबीब रिश्ता भरोसे
6: अस्सलाम वालेकुम अदा
7: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
6: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
7: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
6: न अदा
8: यार आज कल शहरन तोड़े गोछन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
6: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
7: हां दा कारोबारी इश्तिहारत आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
6: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
8: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नर्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
7: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
9: 03013992836
8: मोहम्मद उमर गोरी 0319 1557724
10: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफएम 94

0: It's 10 a.m. This time check is brought to you by
1: Bank Al Habib. Rishta Bharose Ka.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: मिशन जी सरबरा इब्राहिम अजीजी चवादा अपना हुरमज लाए कानूनी बिल तैयार कहवे वाहे रानी बजरत जी सरगर्मी शुरू थी सरबरा इब्राहिम अजीजी चवादा अपना हुरमज लाए कानूनी बिल तैयार कहवे वाहे रानी बजरत जी सरगर्मी शुरू थींदे बिल मंजूर कहवेंदो

की हुकूमत एक भेरो बीहर पेट्रोल इंजन में इजाफो कर छो। पेट्रोल 14.92 रुपया और डीजल 15 रुपया फी लीटर महंगो। पेट्रोलियम डिवीजन कीमत में इजाफे जो नोटिफिकेशन भी जारी कर छो। कीमत में इजाफे बाद पेट्रोल की नई कीमत 414.78 रुपया और डीजल 414.58 रुपया फी लीटर तक पहुंच पाया। मिठी में मेरे महेश महलानी जिस पर्सनल असिस्टेंट समेत 19 जन खिलाफ केस दाखिल। सुमरा बिरादरी 20 कलाकन का लगल धरनो खत्म। गोठ गोदियार में डॉक्टर महेश महलानी एमपीआर अरबाब बिरादरी 20 कलाकन का लगल धरनो खत्म। गोठ गोदियार में डॉक्टर महेश महलानी एमपीआर अरबाब गारियो पुलिस चेक पोस्ट पर धरनो हयो। एमएनए महेश महलानी के पर्सनल असिस्टेंट सिराज सुमरो समेत 19 जन खिलाफ केस दाखिल करने बाद गुजरल डी का लगल धरनो खत्म कर वो। केस में एमएनए पीए सिराज सुमरो मुश्ताक मियादाद अजीज़ुल्लाह गुलाम नबी बिन के नामजद किया वो।

0: पब्लिक सर्विस कमीशन वाले ना तो परहेजगार हैं ना इंसाफ कर रहे हैं। कल रात रिजल्ट आया सीसी 2024 का, जिसमें से सिर्फ 70 लोग पास हुए हैं। हम इस रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं है। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन वाले क्या कह रहे हैं, जो रिजल्ट है वो ट्रांसपेरेंट नहीं बना रहे हैं। हमें ये लगता है, इरादा और नियत रखते हैं कि हम कोर्ट जाएंगे इस रिजल्ट के खिलाफ। सिविल सोसाइटी के लोगों को ये रिक्वेस्ट करूंगा, हमारी आवाज का हिस्सा बने। और ये जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में मुसलसल मेरिट की वायोलेशन हो रही है, जो हमें लगता है उसके खिलाफ आवाज उठाए।
1: पेंशन नवाजी है मेरठ जी लितार ना मंजूर। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की कैंडिडेट चटा भेटी इम्तिहान में शिरकत कंदड़ उम्मीदवार नतीजन के तकरारी करार दे छो। एहतजाजी तहरीक भी शुरू कर छी। नतीजे दल की जांच कराने के मुतालबो उम्मीदवार नथन में प्ले कार्ड खड़ी SPS सियाफीस पारा एहतजाज की मुजाहरो कर धरणो हयो। उम्मीदवार सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन वारा मेरिट न पैसा वारी असूल ते यकीन रखन था। नतीजन की शफाफ जांच कराई वही सजी मामले की अदालती जांच कराने के मुतालबो किया। उम्मीदवार जो नतीजन में बेजाबन ए मेरठ की ताड़ कई वही है। तदसिन के संजीदगी से न वरत पो एहतजाज दायरो बताया वो। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में हेल्थ डिपार्टमेंट में असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर ग्रेड 16 की लिखित टेस्ट और इंटरव्यू नतीजन से भी खदशा जाहिर। 44 मार्कू खड़ उम्मीदवार के इंटरव्यू में 85 मार्कू दई पास करण केतन ही सवाल के जन्म दई छो। जन उम्मीदवार जो लिखित टेस्टों में मार्क्स घट हुई उन्होंने इंटरव्यू में डीण से मार्कू दई पास किया। वो लिखित टेस्ट में वड्यू मार्कू खड़ इंटरव्यू में इंतहाई घट मार्कू डी वो। उम्मीदवार है इम्तिहान में मनपसंद उम्मीदवार के पास कराए मेरठ जो जनाजो कढ़ो वो है। SPS जहां तकरारी नतीजा रोके मामले की अदालती जांच कराए खदशा खत्म कराया वन। पाकिस्तानी बेशत लाए चंगी खबर। IMF पाकिस्तान लाए कढ़ाई $2 किस्त की मंजूरी दी छी। नाणे वाले वजीर पारा तस्दीक जहरन मौजिब IMF एक $1 IMF प्रोग्राम तहत आईमोसमैर की तब्दील के असर के मुंह डेण लाई $20 जारी करने की मंजूरी दी वही है। IMF के जायजा मिशन पाकिस्तानी बेशत जो जायजा वठण बाद कर्ज जारी करने की सिफारिश कई हुई। मौजूदा प्रोग्राम तहत पाकिस्तान के मजबूती तौर से $3 मिली चुका है।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: जहां उम्मीद के दिए जलते हैं,
4: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन। मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम, 03000027234, निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 03013865453।
5: खुशखबरी हाँ अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताईं आई हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहराबपुर। वधीक राबते जे लाइ 0300-3385-569, 0300-3385-69।
6: छा अहां जो चेहरो बेजान आई डल लगे थो, हाने वक्त आहे चमकण जो। हैमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम सा कुदरती जुजन सा तैयार कयल जेका दे कुदरती निखार साफ नरम आई रोशन चेहरो पहरे ही इस्तेमाल में फर्क महसूस करियो है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम तहां भी चमकायो पहजो चेहरो जीए होजे हीरो है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम चेहरे इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जोधपुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राबी 201800
7: अस्सलाम वालेकुम अदा
8: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
7: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
8: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
7: न अदा
9: यार आज कल शरण तोड़े गोठन में जीए में 24 ही हले थो मो पेंडो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
7: मुझे दुकान जी बेड हरंदी
8: हां दा कारोबारी इश्तेहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
7: अदा

0: कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
1: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नजगा हालानी
2: रابطے लाए हाकिम अली जिस कहानी
3: 03013992836
4: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो जी एफ एम 94।

0: नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ते जिलाई आसिम हुसैन आराई 0307-35-92120।
1: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज़ GAFM 94।

0: It's 10:30 AM. This time check is brought to you by
1: Hame Diamond Glow Bleach Cream, jo deep clean kare aur de 4 guna brightness. Chamak aise diamond. Hame Diamond Glow Bleach Cream.
2: Khoobsurti hai jo asal raaz. Sirf D Skin Beauty Cream. Hina mein maujood beads ai jadid micro beads formula. Awaji skin ke banaye nikhri ai chamakdar. Sirf bindihan mein dark spots ke kare khatam. Ai diye kudrati asli glow. D Skin Beauty Cream. Asli glow har diye jo show. A product by Biocon International Pakistan.
3: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमबी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट आई फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर आई सूमर

0: पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राबते लाइ 0301-9196-851
1: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
2: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारिया दस्तियाब आहिनि
1: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी
2: राब्ते लाइ प्रोपराइटर गुलाम नबी

0: अस्सलाम वालेकुम अदा।
1: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
0: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
1: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
0: न? अदा
2: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
0: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
1: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
0: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
2: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
1: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
3: 03013992836।
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
1: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

अमरीका ईरान में ईंदड़ हफ़्ते इस्लामाबाद में गालियूं थियण जो इम्कान। अमरीकी अख़बार वॉल स्ट्रीट जर्नल जी रिपोर्ट में चयो आहे त अमरीका ऐं ईरान सालसी कंदड़ धुरियुन सां गॾिजी शुरूआती मुआहिदे ते कम करे रहिया आहिनि, जंहिं तहत हिकु महीने ताईं गालियुनि लाइ फ्रेमवर्क तय कयो वेंदो, जंहिं जो मक़सदु जंग जो ख़ात्मो आहे। ईरान सां मामला तय न थिया त ॿीहर प्रोजेक्ट फ्रीडम तरफ़ वञी सघूं था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त जंगबंदी बाबति असांजी तजवीज़ुनि ते ईरान जो जवाब अॼु मिलण जो इम्कान आहे। प्रोजेक्ट फ्रीडम सुठो ऑपरेशन आहे, करण जा ॿिया तरीक़ा बि आहिनि। प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस हूंदो, जंहिं में ॿियूं शयूं बि शामिल हूंदियूं। पंहिंजो कमु करे रहिया आहियूं, कंहिंजी डेडलाइन ते को बि ध्यानु नाहे। ईरानी पटे वज़ीर तर्जुमान इस्माइल बाकाई चयो आहे त तेहरान अमरीकी तजवीज़ुनि ते गौर करे रहियो आहे, नतीजे ते त पहुतासीं त ऐलान करे छॾींदासीं। ईरानी फ़ौज समूरनि सलाहियतुनि सां मुकमल तौर ते तयारु आहे, सूरतहाल बि नज़र रखियल अथसि।

ईरान हमला हुरमज लाइ कानूनी बिल तैयार करे वरतो। ओपन सेशन में मंजूरी वरती वेंदी। ईरानी पार्लियामेंट जो कौमी सलामती कमीशन जे सरबराह इब्राहिम अजीजी चयो आहे त हमला हुरमज लाइ कानूनी बिल तैयार कयो वियो आहे। ईरानी पार्लियामेंट जूं सरगर्मियूं शुरू थींदे ई बिल मंजूर कयो वेंदो।

पेट्रोल अगन में गाॾी टोड़ वाद खे आवाम रद्द करे छॾियो। शहरनि जो चवण आहे त पहिरें ई महांगाई खे मुंहुं ॾियूं पिया। हुकूमत पेट्रोल वधीक महांगो करे ज़ुल्म कयो आहे। हुकूमत पेट्रोल अगन में कयल वाद खे फौरी तौर ते वापसि वठे रिलीफ फराहम कयो वञे।

बलीर में बबारड़ा पानी के खर में बुरी फौत। हादसे में एक औरत हयाती विञाए बैठी। सुपर हाईवे भरसां धनीबख्श गोठ में बबारड़ा पानी के खर में बुरी फौत थी। फौती बारन जा लाश अस्पताल मुंतकिल सुणप नी सी। रोड हादसे में फौतल हसीना जाल मोहरम जो मड़ अस्पताल मुंतकिल।

0: ऐं नादरीन खानपुर वेझो पैसनि जी जदी लती हथां ॻोठाणो मुबैना तौर ते अगवा फैज़ुल आड़े वटां हथियारबंद ज़मीन ते ढोर चाढ़ींदड़ नौजवान अब्दुल शकूर ओठाणो खे अगवा करे विया। वारसनि चवणाए त हथियारबंद पंज मेहू ट्रैक्टर बि कया विया आहिनि। पुलिस मूजिबि नौजवान पैसनि जी जदी लती तां अगवा थियो आहे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे चार गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम। लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे चार गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा, विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर ए सोम

0: पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-8151।
1: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो जी एफ एम 94।

0: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे। हीउ पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो।
1: ज़िंदगी गुज़ारियो एतमाद सां क़ुरान खे समझी ॿुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल क़ुरान रोज़ानो सुबुह 9:05 ते सिर्फ़ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलस होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं मा अख़्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो। कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर। राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120।
3: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।

0: It's 12 PM. This time check is brought to you by
1: Bank Al Habib. Rishta Bharose Ka.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN.
3: अमरीका ईरान में दड़पते इस्लामाबाद में गालियों थड़ने का इम्कान अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में छिपे हुआ है। अमरीका ईरान सालसी करना धुरन से गजी शुरुआती मुआहदे से कम कर रो है जै तहत एक महीने ताई गाड़ियों लाइ फ्रेमवर्क तय किया वो जो मकसद जंग जो खात्मो है। ईरान से मामला तय न थिया तो बीहर प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस तरफ वही सूं था। अमरीकी सदर ट्रंप है तो जंगबंदी बाबत असाज तजवीजन से ईरान जो जवाब अज मिलने जो इम्कान है। प्रोजेक्ट फ्रीडम सुठो ऑपरेशन है करण जहा बया तरीका भी प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस होंद जैमें बी श शामिल होंद। पैं कम करूं पा कें डेडलाइन से को भी ध्यान ना है। ईरानी परे वजीर तर्जमान इस्माइल बाखाई चवा तेहरान अमरीकी तजवीजन से गौर कर रो है नतीजे से पौता तो ऐलान कर छींदी। ईरानी फौज समूरन सलाहतन से मुकम्मल तौर से तैयार है सूरत हाल से भी नजर रखल अथस। ईरान आबन हुरमज लाइ कानूनी बिल तैयार करे वरतो ओपन सेशन में मंजूरी वरती वेंदी। ईरानी पार्लियामेंट के कौमी सलामती कमीशन सरबराह इब्राहिम अजीजी चवा है तो आबन हुरमज लाइ कानूनी बिल तैयार किया वो है। ईरानी पार्लियामेंट जो सरगर्मियों शुरू थन्दे ही बिल मंजूर किया वो। पेट्रोल अघन में घाटे टोड़ वाद के आवाम रद्द कर छो शहर में चवण है तो पे ही महंगाई के मूरियो पा हुकूमत पेट्रोल महंगो कर जुल्म किया है। हुकूमत पेट्रोल अगन में कल वाद के फौरी तौर से वापस वे रिलीफ फराहम करे। पन वाकिल वेझो पसंद पढ़ने लाय घर निकरंदड़ नौजवान के घर जो चार औरतों मुबैना तौर से अगवा हथियारबंद गोट थमी खान बसमात आतुल अला जवाई कायमा ए साहिबा महर के अगवा कर पाया। वारसन मौजूद अकबर महर ए बिन औरतन के अगवा कर पाया है। गोठान मौजूद पसंद पढ़ने लाइ निकल नारी के वारसन पलान में औरतन के अगवा किया है। खैरपुर के गोठ भाणो में जमीनी तकरार तक थल में जख्मी नौजवान फौत सदाम हुसैन कुलपोटो गिम्स अस्पताल में जख्मी सूरन से दम धनी हवाले किया।

0: कोट गुलाम मोहम्मद वेझो ज़मीन मां चइनि ॿारनि जी माउ जो तशद्दुद थियल लाश हथ। शांती नगर वासण सीटा दी बिजल कोली जो लाश घर ॿारां ॿनीअ मां मिलियो। औरत जी माउ मूजिबि धीअ खे क़तल कयो वियो आहे। जवाबदन खे गिरफ़्तार कयो वञे। पुलिस फ़ौज पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो इंतज़ारु आहे। बाक़ी जी जांच कई पई वञे। बलीर में बबाड़ा पानी के खर में बुरी फोत। हादसे में एक औरत हयाती विञाए वेठी। सुपर हाईवे भरसा धनी बख्श गोठ में बबाड़ा पानी के खर में बुरी फोत थिया। फोती बालन जा लाश अस्पताल मुंतकिल सुञाणप न थी सघी। रोड हादसे में फोत थियल हसीना ज़ाल मोहरम जो मड़ अस्पताल मुंतकिल कयो वियो। खानपुर वेझो पैसनि जी जेती रेती तां ॻोठाणो मुबैना तौर ते अगवा। फैज़ू लाड़े वटां हथियारबंद ज़मीन ते ढोर चाढ़ींदड़ नौजवान अब्दुल शकुर ओढाणो खे अगवा करे विया। वारसनि चवण आहे त हथियारबंद पंज मेहू ट्रैक्टर पकाए विया आहिनि। पुलिस मूजिबि नौजवान पैसनि जे तिले तां अगवा थियो आहे। मेहर जे सिदल मैसर पाड़े मां अगवा थियल बाड़ी उजाला परवीन सोलगी खे पुलिस बाज़ियाब कराइण में नाकाम। नींगरी जी बाज़ियाबी लाइ वासन पारां घंटा घर चौक वटि लॻायल एहतजाजी कैंप 10 ॾींहं बाद जारी। अॻवाणनि मूजिबि 26 ॾींहं गुज़रण बावजूद पुलिस नींगरी खे बाज़ियाब नाहे कराए सघी। नादरीन मठियारी जे इलाइक़े सेखाड़ भरिसां क़ौमी शाहराह ते कार कल्टी टिन औरतुनि समेत 5 ॼणा ज़ख़्मी। ज़ख़्मियुनि खे इस्पताल मुंतकिल कयो वियो। मीरपुर माथिरो जे फिलोर मिल भरिसां रोड हादसो। पनवाकिल जे घोट शेरू बुलो वासी पीरसन गुलज़ार अहमद फोत। लाश इस्पताल मुंतकिल।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: जहां उम्मीद के दिए जलते हैं।
3: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन। मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर। शानदार तालीमी इमारत। प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन। एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार। मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला। सरसब्ज बागीचा। बेहतरीन फर्नीचर। शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स। ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत। केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो। एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतीज। खेलों का मैदान और वहाँ मुनक्किद होने वाले मुकाबले। तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले। स्टडी टूर्स। अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन। मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम 03000002734। निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 03013865453।
4: खुशखबरी खुशखबरी हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असुर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर। वधीक राबते जे लाइ 0300-383-569 03003-8559।
5: छा अव्हां जो चेहरो बेजान ऐं डल लॻे थो? हाणे वक़्त आहे चमकण जो। हेमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम सां कुदरती जुज़न सां तयार कयल, जेका ॾे कुदरती निखार, साफ़ नरम ऐं रोशन चेहरो। पहिरें इस्तेमाल में फ़र्क़ महसूस करियो। हेमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम तव्हां बि चमकायो पंहिंजो चेहरो जीअं हुजे हीरो। हेमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम चेहरे जी असल चमक जो राज़।

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी भाईरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 तौकीर अहमद 0306-16-23-793
1: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320180003
2: अस्सलाम वालेकुम अदा
3: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
2: मुझे दुकान जी बेड हरंदी
3: हां दा कारोबारी इश्तिहारत आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हले
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
3: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
5: 0301-399-2836
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी FM 94

0: 7:15 PM.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream, Asli Glow Har Diya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
3: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

0: It's 12:30 PM. This time check is brought to you by
1: Hame Diamond Glow Bleach Cream, जो deep clean करे और दे 4 गुना brightness, चमक ऐसी diamond skin जैसी. Hame Diamond Glow Bleach Cream.
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वदन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमबी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर

पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वहण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दनि ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो

0: जैसी चमक हमें डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे चार गुना ब्राइटनेस, चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी। हमें डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम। लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी, मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक हमें डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे चार गुना ब्राइटनेस, चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी। हमें डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम।
1: मेरान आयरन स्टोर हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
2: सरिया गार्डर टीएल एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई।
1: हाँ नहीं अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
2: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 02424601000।
3: अस्सलाम वालेकुम अदा।
4: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
3: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे
4: अदा? दुकान जी मशहूरी कराई थई
3: न अदा?
1: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में।

0: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो।
1: छा अव्हां जो चेहरो बेजान ऐं डल लॻे थो? हाणे वक़्त आहे चमकण जो। हेमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम सां कुदरती जुज़नि सां तयार कयल, जेका ॾे कुदरती निखार, साफ़, नरम ऐं रोशन चेहरो। पहिरें ई इस्तेमाल में फ़र्क़ महसूस करियो। हेमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम तव्हां बि चमकायो पंहिंजो चेहरो जीअं हुजे हीरो। हेमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम, चेहरे जी असल चमक जो राज।
2: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर, और मेहराबपुर की आवाज़ GAFM 94।

सिंध में पाणी जी शदीद खोट दौरान पंजाब तकरारी लिंक कैनाल खोले छा पंजाब तकरारी सीजी लिंक कैनाल जरिए 5000 क्यूसेक टीपी लिंक कैनाल जरिए 7460 क्यूसेक पानी खाण लगो। हिरसा में सिंध के नुमाइंदे मामले से खामोशी अख्तियार करे वरती। जरियन मूजिब तकरारी कैनाल खोलने

अमरीका ईरान मीडल हफ्ते इस्लामाबाद में गालियों छन जा इम्कान। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में चव है तो अमरीका ईरान साजिकरण बिंदरन से गर्जी शुरुआती मुआदे से कम कर रहा हूं, जै तहत एक महीने तक ईरान साजिकरण बिंदरन से गर्जी शुरुआती मुआदे से कम कर रहा हूं, जै तहत एक महीने तीन गाल जरिए फ्रेम वर्क तय किया वो जो मकसद जंग जो खात्मो है। ईरान से मामला तय न थे तो बीहर प्रोजेक्ट फ्रीडम पिलर्स तरफ वही था। अमरीकी सदर ट्रंप चवा है तो जंग बंदी बाबत असा तजवीजन से ईरान जो जवाब अज मिलने के इम्कान है। प्रोजेक्ट फ्रीडम सुठो ऑपरेशन है करण जहा बया तरीका भी प्रोजेक्ट फ्रीडम पिलर्स होंद जैमें बी शूं भी शामिल होंद। पैं कम कर रहा हूं कें डेडलाइन से को भी ध्यान ना है। ईरानी परदेही वजीर तर्जमान इस्माइल बाकाई चवा है ईरान अमरीकी तजवीजन से गौर कर रो है, नतीजे से पौतासी तो ऐलान कर छींदा। ईरानी फौज समूरन सलाहतन से मुकम्मल तौर से तैयार है, सूरत हाल से भी नजर रखल अथस। अमरीकी नाकाबंदी बर्दाश्त कर सके तो अमरीकी गुजे ये ट्रंप इंतजामिया के आगाह कर छो। आलमी नशियाती इदारे मौजूद सीआईए पे नई रिपोर्ट में जाना है तेरान चैन महीन तीन अमरीकी नाकाबंदी बर्दाश्त कर सके तो जै सबब ही ईरान अमरीका जो दबाव घड़े हद तक कबूल न कर रो है। तेहरान के गाल में सुस्ती जो सबब इो ही है। ईरान आबदा हुरमत लाय कानूनी बिल तैयार कर वरतो, ओपन सेशन में मंजूरी भी वरती वेंदी। ईरानी पार्लियामेंट के कौमी सलामती कमीशन सरबराह इब्राहिम अजीजी चवा है तो आबदा हुरमत लाय कानूनी बिल तैयार कर वो है। ईरानी पार्लियामेंट की सरगर्मियों शुरू थन्दे ही बिल मंजूर किया वो। पेट्रोल अघन में घाटे टोड़ वाद के अवाम रद्द कर छो, शहर जो चवण है तो पहले ही महंगाई के मुंह दूं पा। हुकूमत पेट्रोल महंगो कर जुल्म किया है, हुकूमत पेट्रोल अघन में कल वाद के फौरी तौर से वापस वे रिलीफ फराहम करे। पिंगरों के गोड़ खुदाबख्श सबाणी में नौजवान कुहाड़ी का वार कर कतल, कुआरसन जो लाश रखी धरणों जवाबदार गिरफ्तार कर करण जो मुतालबो। जवाबदारन 21 साल के भुट्टो सोलंकी के कुआड़ी का वार कर कतल किया, वास्तव मूजिब जवाबदार मुनवर इसबाणी नौजवान कतल किया है, खेस गिरफ्तार किया वे। मुनवर इसबाणी नौजवान कतल किया है, खेस गिरफ्तार किया वे। बनवाकिल वेझो पसंद पढ़ने लाइ घर निकतल नारी के वासन जो नौजवान के घर से मोबाइल हमलो, मोबाइल तौर से चार औरतू अगवा। नौजवान सदीक कुमार के वारसन मूजिब हथियार बंद मुस्माद दातुल अलाजीवाई कायम साहेबा बहर के अगवा कर व्यान, पुलिस कुछ न कर रही है। पुलिस चवा औरतू अगवा नायन थी, अगवा वारा इतला कूड़ा आन। कोर्ट गुलाम मोहम्मद वेझो जमीन में चैन बार माओ जो तशद थे लाशत, शांति नगर वासन सीता धी बीजल कोहली लाश घर भर से बनी में मिलो, औरत की माओ मूजिब धी के कतल किया वो है, जवाबदार के गिरफ्तार किया वे। पुलिस मूजिब पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो इंतजार है, बाकी जांच कई पी वे जैसे नजार निशान नजर न था अचानक।

सिंध में पानी की खोट खिलाफ आबादगरन जो एहतजाज जारी। फैजगंज टंडवादम में आबादगरन जो मुजाहरा। फैजगंज के एफियो भाव अली नवाज भाव में पानी की खोट खिलाफ आबादगरन जो मुजाहरो। आबादगरन मूजब पानी न मिलने सबब जमीन सुकी पाया। पानी फराहम किया वे टंडवादम के जाम बेराज मनकुनड़ नेदरा माइनर के आबादगरन जो पानी की खोट खिलाफ एहतजाज। आबादगरन जो तो पानी खोट सबब फसल सुकी तबाह थी वह पानी जो विकड़ो रोके फराहम किया वे। हक वारी जंग में कामयाबी के साल मुकम्मल थे।

0: जॻह जा पावा ऐं पाइप ॾेढ ॿ चार छह नव ऐं ॿारहं इंच में प्लेन ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: This program is brought to you by
2: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो।
3: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर, राब्ते जे लाइ 0320-1800-003।
4: लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे चार गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम। लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे चार गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम।
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो GFM 94।
1: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
2: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो।
6: अगर हम चाहें तो तुम्हें जिंदगी भर जेल में सड़ा सकते हैं।

0: It's 1:15 p.m.
1: This time check is brought to you by White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

तुम्हारी उम्मीद तो मौजज़ों के बादशाह से है, तुम्हारी उम्मीद तो मौजज़ों के बादशाह से है, फिर क्यों परेशान हो, तुम्हारे पास तो अल्लाह है। सिंटब दंदड़ा सबनी समात उनके मुझे तरफा अस्सलामु अलैकुम। फुरकुलू दों के समंदर, चाहतों की बारिश, आवाज़ और खजानों के साथ दुआ है पल से पल तक, आज से कल तक, सुबह से शाम तक, दिन से रात तक, नींद से जाकर जमीन से आसमान तक, जिंदगी से मौत तक, साथ तार तगम से खुशी तक, दिल से दिल को, जिंदगी के पहले दिन से जिंदगी के आखिरी दिन तक, अल्लाह ताला आप सबको और हम सबको हमेशा हमेशा हमेशा अपनी रहमतों और बरकतों के साए में सलामत रखे, सो आमीन या रब्बुल आलमीन। बिल्कुल जनाब, आप सुन रहे हैं GFM88 नेटवर्क। हमारे साथ मौजूद है जनाब यहाँ पर सखे मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरा पर मातली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो। बिल्कुल जनाब, प्रोग्राम व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो आप लोगों का अपना प्रोग्राम आप लोगों तक पहुंचाया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से, एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। ये प्रोडक्ट्स आप लोगों की खूबसूरती के लिए हैं, खूबसूरती को बढ़ाने के लिए और आप लोगों के चेहरे पर हसीन साल निखार लाने के लिए है। ओके जनाब, से तैयार हो जाएंगे, रेडी शेडी हो जाएंगे और हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद रह जाएंगे, क्योंकि भाई ऐसा होता है ना कि अगर ये प्रोग्राम आप हमारे साथ मौजूद है और सुन रहे हैं तो ये चीजें आप लोगों के लिए होती हैं कि भाई अगर आप व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल प्रोडक्ट करेंगे या फिर डी स्किन के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करेंगे तो इन दोनों प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल के बाद आप लोगों को रिजल्ट्स कैसे मिलने वाले हैं और क्या चीजें ऐसी हैं, क्या डिफरेंस है जो कि आप लोगों के समझने की बातें होती हैं, तो बिल्कुल जी सब कुछ समझाएंगे और आराम से समझाएंगे, प्यार से समझाएंगे, तहम्मुल से समझाएंगे। और इसी के साथ साथ यहाँ पर जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं तमाम लोगों को वेलकम एंड खुश आमदीद कहा जाता है। बिल्कुल जी, आपकी मोहब्बत हो समात हो और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। इसी के साथ साथ जरा अपना भी तारुफ करवाते हैं। सो लिसनर्स, प्रेजेंट द मोस्ट ब्यूटीफुल, फैंटास्टिक, इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग कैरेक्टर, यू आर शे एंड योर डीजे सिद्रा मुस्कान, नाम तो सुनाई होगा। तो बिल्कुल आपकी सिद्रा आप लोगों के साथ साथ मुखातिब हो चुकी है। यहाँ पर जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, सर आपने हाल चाल बताते जाइए। सो डियर लिसनर्स, अंत के हालत कैसे ही आपकी हालत, उम्मीदन शदीदन कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, सुपकुल मूड के साथ सुपकुल प्रोग्राम का इंतजार करे होंगे। तो आपके जो इंतजार की घड़ियां थी ना वो खत्म हो चुकी है और फाइनली यहाँ पर हमने एंट्रियां मार ही ली। आपको पता ना जब हम एंट्रियां मारते हैं तो बहुत सारे लोगों के दिलों में घंटियां बजाते हैं, तो यकीनन आपके दिलों में भी घंटियां बजाएंगे, आपके चेहरे पर खूबसूरतियां लाएंगे और यहाँ पर आपको बताएंगे कि आपका हमारा साथ रहने वाला है ठीक अब से लेकर पूरे 3 बजे तक। ओके जी, तो फन करने के लिए, बातें करने के लिए, खूबसूरती के राज जाने के लिए आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते जाइए। ओके जी, तरीकेकार क्या होंगे वो आप लोगों को बताएंगे, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे साथ ऐसे मौजूद होते हैं जो कि अपने कामों के दौरान हमें सुन रहे होते हैं। बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम कर लिए यानी कि फ्री होकर हमारा इंतजार कर रहे थे, ऐसी बहुत सारी अंटियां, अम्मियाएं, खालाएं, बाजियां और पापा की परियां जो हमें किचन में सुन रही होंगी यानी कि लंच बनाने के दौरान। तो भाई अपने काम भी कीजिए, हमें भी सुनिए, आपको कहेंगे मेरी वाली गुड आफ्टरनून। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुनी लिए हैं तो जनाब अब जबरदस्त से गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए। ओके जी, तो बिल्कुल आपके होंठों पर 440 उल्की स्माइल आते हैं। यहाँ पर ऐसा करते हैं, आगाज से प्रोग्राम कर लेते हैं। सबसे पहले आगाज से प्रोग्राम करते हैं जी, प्रोग्राम व्हाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो में, और यहाँ पर वापस आकर आप लोगों को बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में क्या है और साथ साथ ये जो प्रोडक्ट्स आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ तो इनके क्या फायदे हैं जो कि आप लोगों को मिलेंगे जब आप इस्तेमाल करेंगे। तो बिल्कुल जी मौजूद रहिए, एंजॉय करते जाइए और हमारा साथ देते रहिए पूरी 3 बजे तक। आपका हमारा साथ प्रोग्राम व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। सुनते रहिए और हमारा साथ दीजिए।

प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एश एंटी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। यहाँ पर आपकी सिद्रा आप लोगों के साथ साथ मौजूद है और मेरे साथ कौन है मुझे बताते जा रहे हैं। शामिल प्रोग्राम होते जाएंगे और किस तरह से आप हमें ज्वाइन करेंगे बिल्कुल जी वो आप लोगों को बताएंगे, लेकिन साथ साथ आज के प्रोग्राम में आप लोगों के लिए क्या है जरा उसकी जानब भी आते, क्योंकि प्रोग्राम के अंदर सेगमेंट्स होंगे और प्रोग्राम के अंदर आप लोगों से सवाल पूछा जाएगा। तो आज जो मेरा आप लोगों से सवाल होने वाला है तो वो बिल्कुल ये होने वाला है, आज जो है ना हमारे लिसनर्स जितने भी हमारे साथ मौजूद है, जितनी भी समाज हमारे साथ मौजूद है, प्रोग्राम सुन रहे हो, शामिल प्रोग्राम होना चाहते हैं, तो आज जरा आप मुझे ये बताइए हर लोगों के साथ ना स्किन अगर आपकी जो होती ना उसके साथ कोई ना कोई ऐसा मसला होता है जो कि आप चाहते हैं कि भाई ये कैसे दूर किया जा सकता है, या फिर आप लोगों को कई मतलब ऐसा होता है कि आप लोगों को सहूलतें नहीं होती कि भाई आप किससे मशवरा कर सके, या फिर अगर आप मशवरा करते भी हैं तो आप लोगों को ये नहीं समझ आती बात कि क्या वो अगला इंसान हमें सही जो है ना वो एडवाइस देगा या नहीं देगा। तो आज मैं आप लोगों से सवाल बिल्कुल ये पूछूंगी, आज ऐसा करते हैं कि आप लोग जो ना मुझे अपनी स्किन की जो है ना वो प्रॉब्लम शेयर करेंगे, आप लोगों की स्किन के साथ क्या प्रॉब्लम है वो आज आप मुझे बताएंगे और उसके साथ साथ मुनासिब सा जो है ना मैं आप लोगों को उसका हल बताऊंगी। और उसके अलावा हमारे पास जो इतने सारे प्रोडक्ट्स मौजूद हैं जिनमें आप लोगों के लिए डी स्किन के प्रोडक्ट्स हैं और व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स के प्रोडक्ट्स हैं, तो इनमें आप लोगों के लिए कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप इस्तेमाल करके अपनी ना खूबसूरती को बढ़ा सकते हैं और अपनी खूबसूरती में चार चांद लगा सकते हैं। तो ये बातें आज के प्रोग्राम में हम करेंगे आप लोगों के साथ साथ, आप लोगों के मैसेजेस होंगे, आप लोगों के कॉमेंट्स होंगे और आप लोगों की कॉल्स भी होंगी। तो बिल्कुल जी अगर आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं पहली मरतबा रोजाना या फिर आप घूमने वाले लिसनर्स हैं तो क्या करेंगे, अपना सेल फोन उठाएंगे जनाब, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाएंगे, टाइप करेंगे LRK, सिंगल स्पेस देंगे, अपना नाम लिखेंगे, पूरा मैसेज लिखेंगे और उसे सेंड कर देंगे 8881 पर। उसके अलावा अगर आप हमें फेसबुक पर सुनना चाहते हैं तो फेसबुक पर आप हमें इजीली सुन सकते हैं, हमारा पेज जनाब जी लाड़काना FM 88.8 का, और जी FM 88.8 के पेज के ऊपर जब आप आते हैं तो आपको हमारे प्रोग्राम की लाइव पोस्ट मिल जाती है जिसे आप लाइक करेंगे, कमेंट कर देंगे और शेयर कर देंगे, ठीक हो गया जी। और उसके साथ साथ अगर आप हमारे साथ कॉल करना चाहते हैं प्रोग्राम में, कॉलिंग के जरिए शामिल रहना चाहते हैं तो कॉलिंग आप लोगों का जो कॉलिंग वाला सेगमेंट है वो 2 बजे के बाद स्टार्ट किया जाएगा, तो कॉलिंग नंबर क्या होगा वो भी 2 बजे के बाद ही बताया जाएगा। फिलहाल आप हमें मैसेज कीजिए और कॉमेंट करते रहिए, साथ साथ बाकी जो लोग हमें फेसबुक पर सुन रहे हैं फेसबुक पर मौजूद रहना चाहते हैं, कनेक्ट रहना चाहते हैं, तो फेसबुक की पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करते जाइए, ठीक हो गया जी। पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिए, ऐसे ये होता है कि भाई हम बहुत ज्यादा लोगों को बता पाते हैं कि हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे आप लोगों को कैसा फायदा मिलने वाला है। तो बिल्कुल अगर आप भी इस्तेमाल करना चाहते हैं व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स को तो आप लोगों की खूबसूरती के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तो इसी के साथ साथ हम जरा आप लोगों को ये भी बताते चले कि व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए कौन कौन से प्रोडक्ट्स शामिल होते हैं जनाब। तो व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए सबसे पहले व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम मौजूद है, उसके बाद व्हाइट एश का जो है ना आप लोगों के पास विटामिन सी का फेस वॉश मौजूद है, और उसके अलावा व्हाइट एश का ना आप लोगों के लिए ब्यूटी सो भी मौजूद है, और उसके साथ साथ आप लोगों के लिए व्हाइट एश की लवली अल्ट्रा विटामिन की क्रीम भी मौजूद है जो कि भाई आप लोगों की स्किन के लिए परफेक्ट वाला निखार साबित होने वाली है। उसके अलावा व्हाइट एज के हेयर रिमूवल लोशंस भी हैं जो कि 3 मुख्तलिफ फ्लेवर्स में आप लोगों को मिल रहे हैं। उसके अलावा व्हाइट एज का स्मूथ स्किन वाला जो है ना वो लोशन भी मौजूद है जो कि आप बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं जिनकी स्किन ड्राई होती है काफी ज्यादा, लेकिन ये तो खैर सर्दियों वाला प्रोडक्ट है, लेकिन अगर गर्मियों के प्रोडक्ट की बात की जाए तो इस लोशन को छोड़कर बाकी आप सारे प्रोडक्ट्स बसानी गर्मियों में भी लगा सकते हैं। और उसके साथ साथ डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स की बात की जाए तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ साथ आप लोगों को डी स्किन का फेस वॉश मिल रहा है, ये जनाब सीरम के साथ साथ तैयार होता है आप लोगों की स्किन को जो है ना वो डीपली मॉइस्चराइज करेगा, आप लोगों की स्किन को डीपली खूबसूरत बनाएगा, और डी स्किन के साथ साथ आप डी स्किन का फेस वॉश भी लगाते हैं। और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जो है ना ये जनाब विटामिन ई बीड से तैयार होता है माइक्रो बीड्स फार्मुलेशन के साथ साथ जो कि आप लोगों को 2 दिन के अंदर परफेक्ट वाले निखार देने वाले हैं। तो इतने शानदार क्वालिटी के ये प्रोडक्ट्स भाई आप लोगों के लिए मार्केट में अवेलेबल है, तो बस आप अपने करीबी जनरल स्टोर पर जाइए, वहां से मालूमात लीजिए और परचेज कीजिए। और इसी के साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि भाई हमारे करीबी जनरल स्टोर पर अवेलेबल होने चाहिए और हम वहां से जाकर परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके लिए नंबर भी मौजूद है, नंबर के ऊपर रابطہ करेंगे तो नंबर है जनाब 03-15-799-0595, 03-15-799-0595, ये नंबर डायल कीजिए और अपने किसी भी करीबी जनरल स्टोर पर व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो आप

इजीली अवेलेबल करा सकते हैं. तो बिल्कुल जी अवेलेबल कराते जाइए, खूबसूरती को बढ़ाते जाइए और साथ साथ हमें बताते जाइए अपनी स्किन के प्रॉब्लम्स के बारे में, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं ना बड़े परेशान होते हैं कि हमारी स्किन के साथ ये मसला हो चुका है और हमारी स्किन जो है ना खराब हो चुकी है, हमारे चेहरे पर जो है ना एक्ने का बहुत ज्यादा मसला है या फिर हमारी स्किन काफी ज्यादा अजीब टाइप की है, क्योंकि कई मरतबा ऐसा होता है कि आप अपनी स्किन टोन को भी समझ नहीं पाते. तो आज आप जरा अपनी स्किन के मसाइल मेरे साथ शेयर करेंगे और हो सकता है कि उन मसाइल में से थोड़ी बहुत से ऐसे टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं जो कि आप लोगों के स्किन के लिए फायदेमंद साबित हो. ओके जी, तो बिल्कुल ये प्रोग्राम आप लोगों का अपना है, अगर आप नहीं होगी तो मजा कैसे आएगा. तो बिल्कुल जी शामिल प्रोग्राम होते जाइए और मुझे बताइए कि आप हमारे साथ मौजूद हैं और कहां से आप हमें सुन रहे हैं ये भी बताते जाइए. ओके जी, इसी के साथ साथ यहाँ पर हमारे साथ नूर से तो भाई हमें ज्वाइन कर चुके हैं लाड़काना से. आप हमारे शो की तारीफ करें, बहुत शुक्रिया जी. नजीर खोस हमें सुन रहे हैं बलूचिस्तान से, बहुत शुक्रिया. और उसके अलावा हैं जी वफा मीर मुनव्वर अली भाई. वफा मीर मुनव्वर भाई आपको वेलकम करते हैं. आदिल हुसैन हमारे साथ मौजूद है, वेलकम जी. हिदायतुल्ला अहमदानी हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम. अब्दुल रजाक हमें सुन रहे हैं, वेलकम जी. इकबाल लाशारी हमारे साथ प्रोग्राम में कनेक्टेड हैं, वेलकम जी. और उसके अलावा हमारे साथ ही जनाब यहाँ पर फहद देरी, सऊद देहरी, नवाब शाह थे कहते हैं सलाम अदीशो तुम्हारा जो नाई साहे प्लीज प्ले हो मेरा चना. ओके जी, मैं फुल कोशिश करूंगी आपको हो मेरा चना सुनवाएंगे. किशोर भाई आ चुके हैं, मैं तो ये बात है, वैसे वीडियो बड़ी अच्छी बनाई है इन्होंने, तो हाँ अच्छा एंटरटेनमेंट हो जाता होगा आप लोगों का. चलिए जी, इसी के साथ साथ ना आप लोग हमारे साथ मौजूद रहते जाइए, ज्वाइन करते जाइए और मुझे बताइए आपकी स्किन के साथ कौन सा ऐसा मसला है जिसे आप चाहते हैं कि ये खत्म हो जाए. और साथ साथ प्रोग्राम में आप कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए और कॉल भी करेंगे. ओके जी, तो यहाँ पर टाइम हो जाता है, जरा हम शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक ही जाने जाएंगे, उसके बाद जल्दी से वापसी आप लोगों के पास आएंगे. तो आपने कहीं नहीं जाना, मौजूद रहिएगा, सुनते रहिए, एंजॉय कीजिए और हमारा साथ दीजिए. मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूँ. सो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग 88 नेटवर्क. आप सुन रहे हैं व्हाइट एश एंटी स्किन ब्यूटी शो.

0: It's 1:30. It's 1:30 p.m. This time check is brought to you by
1: Heme Diamond Glow Bleach Cream. Kudrati jizan sa tayar kail. Jekade kudrati nikhar. Saaf naram ay roshan chehro. Heme Diamond Glow Bleach Cream.
2: Sindh Dental Clinic, Dr. Rafiq Ahmed, Consultant Dental Surgeon, BDS, RDS, CNO, CRTHO, HSA Islamabad, Asawad Bagir Taklif Ajay Danda Kadhya Ayin Nama Danda Lagaya Vida Ahin Har Kam Jadid Technology Saan Kayo Vidua Hai, Jarasim Khan Pak Ozar, Vakt Subuh 8 Vagay Khan Majhad Hika Vagay Taayin, Pato Nazd Gul Hotel Halani, Rapte Jalai 0300-51-63-088.
3: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमबी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट आई फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर

0: मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन के कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाइ 0301-9196-851।
1: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
2: जडे मां पंहिंजो ख्याल रखंदी आहे त सिहत नसलन ताईं हलंदी आहे। हीउ पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो। जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलन ताईं हलंदी आहे। हीउ पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो।
3: खुशखबरी खुशखबरी हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहनि एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असुर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर। वधीक राबते जे लाइ 0385-569-0300-3883-8556-9।
4: जिंदगी गुजारियो एतमाद सां कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
5: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम

0: एलोवेरा फैन
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा?
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
2: मुझे दुकान जी बेट हलंदी?
3: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
3: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
5: 03013992836
4: आई मोहम्मद उमेर गोरी 03151557024।
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।

0: एक तारीफ साज फतह, फजाओं में गरजते शाही, जमीन कसीना दहलाते मजबूत कदम, समंदर में फैली खामोश ताकत और वो मार्कतुल आरा क़यादत, जिसने सर किया मार्काए हक, जिसकी गूंज सात समंदर पार दुश्मन को लरता गई, दूर अंदेश क़यादत और जुर्रत और बहादुरी का इजहार, मादरे वतन से लाजवाल इश्क और शौके शहादत की आला मिसाल, हमारी हर सांस जज्बाए जुनून और जवां, हर परवाज हर उड़ान वतन की हुर्मत के नाम।
1: Even the shooting down of those six planes was Pakistan showing restraint. Pakistan had 20 Indian planes locked that night.
0: Markai Haq, ek fatah, ek paigham, ek Pakistan.
2: Pakistan, hamesha zindabad, hamesha zindabad, hamesha zindabad.
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 8:30 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
4: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

नमस्ते जनाब, आ चुके हैं दोबारा आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं GFM88 नेटवर्क। हाँ जी, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है यहाँ पर सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकर मेहरापुर मंथली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एश एंटी स्किन ब्यूटी शो। बिल्कुल सही, यहाँ पर बातें होती हैं व्हाइट एश एनजी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में, क्योंकि ये दोनों प्रोडक्ट जो है ना आप लोगों के खूबसूरती के लिए, आप लोगों के खूबसूरती को मेंटेन करते हैं और आप लोगों के चेहरे को हसीन से भी ज्यादा हसीन बना देते हैं। तो अगर आप भी अपनी स्किन को लेकर परेशानी, अगर आप भी चाहते हैं कि भाई आपकी खूबसूरती जो है वो बढ़नी चाहिए और आप लोग हमेशा अपनी खूबसूरती का ख्याल रखने वाले इंसान हैं, तो भले ये बहुत अच्छी बात है, अपनी खूबसूरती का ख्याल रखना चाहिए। उसके अलावा भाई कौन से प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कि आप लगाएं तो आप लोगों की खूबसूरती बढ़ती जाए, तो बिल्कुल जी आप लोगों के लिए हम लेकर हाजिर खिदमत हो चुके हैं। हाँ जी जनाब, व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों को बताया कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स शामिल है, उसके अलावा जरा हम तफसीलन आप लोगों को बताएंगे। अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम की जानेब आते हैं, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल के बाद आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जब आप दो रातें इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों को परफेक्ट वाले निखार मिल जाते हैं, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है इसके अंदर विटामिन ई बीड्स शामिल है। पाकिस्तान में कुछ गिने चुने प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनके अंदर जो है ना विटामिन ई बीड्स मौजूद है, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों की स्किन और ज्यादा अट्रैक्टिव और ज्यादा खूबसूरत और ज्यादा ग्लोइंग बन जाती है, क्योंकि इसके अंदर विटामिन ई बीड्स शामिल है एंड माइक्रो बीड्स फार्मुलेशन के साथ साथ तैयार शुदा होने वाला ये प्रोडक्ट है। और उसके अलावा आप लोगों की ऑल स्किन टाइप के लिए सिर्फ दो दिनों में वाजे नतायज के लिए डी स्किन वाइटनिंग क्रीम का इस्तेमाल करेंगे जदीद अज्जा के लिए, जैसे कि इसके अंदर जो है ना बहुत सारी ऐसी चीजें ऐड की गई है, ग्लूटाथायोन से भरपूर है ये क्रीम, रात भर काम करती है ताकि आपकी जल्द को चमकदार बनाए, डार्क स्पॉट्स हो या फिर आपके चेहरे पर जितने भी मसाइल हो वो सारे खत्म हो जाते हैं, आपकी स्किन के अंदर तक जाकर गहराई तक जाकर आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करके चमकदार बनाती है, जल्द की साख्त बेहतर करे और नरम हमवार और खूबसूरती जल्द आपकी जो है ना वो बन जाती है, क्योंकि ये डर्माटोलॉजिस्ट की तजवीज से तैयार शुदा होने वाला प्रोडक्ट है। इसके अंदर जो है ना इस तरह की कोई भी चीज ऐड नहीं की गई है, जो कि आपकी स्किन को जरा सा भी नुकसान पहुंचाने वाला प्रोडक्ट होगा। इसे आप हर स्किन टोन वाला इस्तेमाल लगा सकता है, इस्तेमाल करेंगे जी अगर आपकी स्किन कितनी सेंसिटिव हो, दो रातों के इस्तेमाल से आपको मिलेगा परफेक्ट वाला हुस्न, तो दो रातें इस्तेमाल कीजिए। लेकिन इस्तेमाल करने से पहले ये बात भी याद रखें कि आपने डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ साथ डी स्किन का फेस वॉश भी इस्तेमाल करना है, क्योंकि जब आप कोई भी क्रीम लगाए ना तो उसी कंपनी का जो है ना वो फेस वॉश लाजमी साथ में लगाया करें। तो अगर डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाना चाहते हैं तो उसके साथ आप डी स्किन का जो है ना वो फेस वॉश इस्तेमाल कीजिए, रात के टाइम सोने से पहले अपना फेस वॉश कीजिए, उसके बाद जो है ना आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम अपने चेहरे पर अप्लाई कर दीजिए। दो रातों के इस्तेमाल के बाद आपको मिलता है खूबसूरत सा निखार, आपकी खूबसूरती जो है ना वो बढ़ती जाएगी और आप लोगों को जो है ना वो पता चलेगा कि आप वाकई कितना अच्छा प्रोडक्ट जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके साथ साथ अगर हम बात करें यहाँ पर व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम के बारे में, तो व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम जो है आपकी जल्द को फ्रेश और गोरा बनाती है, हर किस्म के नुकसानदार असरात से पाक है और आपके चेहरे पर झुर्रियां हो, दाग धब्बे हो, ये सारी चीजें खत्म हो जाती है, क्योंकि व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम जो है एलोवेरा और एवोकाडो से तैयार शुदा है। तो ये भी बहुत ही अच्छा वाला प्रोडक्ट है। अगर आपके चेहरे पर बहुत ज्यादा झुर्रियां आ चुकी हैं या फिर आपके चेहरे पर बहुत ज्यादा रिंकल्स हैं, आपकी स्किन डल सी हो चुकी है, तो व्हाइट एश लगाएं और व्हाइट व्हाइट हो जाए। उसके साथ साथ व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम के साथ आपको जो है ना व्हाइट एश का ब्यूटी सो भी मिल रहा है और व्हाइट एश वालों का विटामिन सी का फेस वॉश भी मिल रहा है। अब चॉइस आप लोगों की होने वाली है कि आप क्या इस्तेमाल करेंगे। अगर आप सोप लगाने वाले लोग हैं तो आप जाहिर सी बातें सोप लगाएंगे, अगर आप फेस वॉश लगाने वाले इंसान हैं तो जाहिर सी बातें आप फेस वॉश लगाएंगे, ठीक है। ये भी आप लोगों के पास ऑप्शंस मौजूद हैं। और इसी के साथ साथ हम जरा बात करेंगे व्हाइट एश की लवली क्रीम के बारे में। भाई ये तो मेरा पसंदीदा प्रोडक्ट बन चुका है, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे आप जो है ना हर स्किन के साथ साथ जो है ना दिन में लगाने वाला प्रोडक्ट है और हर उम्र का इंसान इसे इस्तेमाल कर सकता है, चाहे आपकी उम्र कितनी भी है, छोटे हैं बड़े हैं, तो हर कोई इसे इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि व्हाइट एश लवली क्रीम जो है ये विटामिन से भरपूर है। इसके अंदर विटामिन B3 मौजूद है, विटामिन C मौजूद है और विटामिन E मौजूद है। उसके साथ साथ बहुत सारे
विटामिन्स का ये जो मिक्सचर है ये तैयार किया गया है, और वाइट एज लवली क्रीम आप लोगों की खूबसूरती को इन्हेंस करती है। और अगर आप चाहते हैं कि भाई इसे आप दिन में लगाएंगे तो बिल्कुल लगाइएगा, दिन में लगाइएगा, रात में लगाइएगा, क्योंकि इसके अंदर जो है सनस्क्रीन भी एड की गई है, जो कि अगर आप दिन में लगाएंगे तो आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करती है। अगर आप कॉलेज गर्ल हैं, अगर आप स्कूल जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो आपने वाइट एज की लवली क्रीम का इस्तेमाल तो लाजमी करना है। अगर आप लड़के हैं, लड़कियां हैं, सब कोई इस्तेमाल कर सकता है बिल्कुल।

होने वाला है, तो व्हाइट एज की लवली क्रीम ऐसा समझ लें कि आप लोगों की स्किन के लिए गेम चेंजर वाला काम करेगी। तो व्हाइट एज की लवली क्रीम आप इस्तेमाल करें, वो लोग जो चाहते हैं भाई हमारी स्किन पर कोई लाइट सा फार्मूला होना चाहिए, लाइट वेटेड कोई आप प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो व्हाइट एज की लवली क्रीम आप लोगों के लिए परफेक्ट है, जरूर लगाइएगा। और इसी के साथ साथ जो है ना, दिन में लगाएंगे सुबह के टाइम, रात के टाइम, जब भी आपका दिल करे, और साथ साथ जो है ना, ये इतनी मस्त क्रीम है ना कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। इनफैक्ट मैं खुद ही भी इस्तेमाल कर रही हूं और मुझे बहुत ही अच्छे जो है ना वो रिजल्ट्स मिल रहे हैं और बहुत अच्छी वाली वाइब भी आ रही है, क्योंकि कहते ना जनी स्किन तवाजी खुश हूं दिया तो पाण ही खुश थी वेंदा आहियो। सो स्किन के बिल्कुल खुश रखो, तवा पाण भी खुश खुश रहो। उन सां गॾो गॾु मां का बिल्कुल अॼु इहो सवाल पुछियो आहे, इनफैक्ट इहो जो टॉपिक रखियो आहे, त तव्हां अॼु मूंखे इहो ॿुधायो पंहिंजी स्किन जे बारे में, तव्हांजी स्किन जा कहिड़ा मसला आहिनि जेके तव्हांखे परेशान कनि पिया, ऐं उहे कहिड़ियूं ॻाल्हियूं आहिनि जेके तव्हां सोचो था त अगरि हीअ चीज़ मुंहिंजी स्किन ते न हुजे आहे त शायदि मां ख़ुशि हुजां पंहिंजे ज़िंदगी में। ओके, तो जल्दी से हमारे प्रोग्राम का ऐसा बनते जाइए और मुझे बताइए कि आप भी हमारे साथ मौजूद हैं और कहां कहां से आप हमें सुन रहे हैं, बताइए ना, पता तो चले। और इसी के साथ साथ यहां पर आप हमें जो है ना वो शामिली प्रोग्राम हो रहे हैं, आप ज्वाइन करते जा रहे हैं तो शामिली प्रोग्राम आपको किया जाएगा, गाने भी हमारे पास मौजूद है तो हम गाने भी सुनेंगे। और इसी के साथ साथ आप क्या कह रहे हैं, आपके मैसेजेस की जाने भी आते हैं, तो फेसबुक वाले लोगो पोस्ट को लाइक और शेयर तो करो, जो है ना वो थोड़ा सा टेंस रहता है, मेरे चेहरे पर ये प्रॉब्लम है, अब इसे कैसे दूर किया जाए, तो उसे जरा मेंशन कीजिए हमारी पोस्ट पर ताकि हम उसे बता पाए कि भाई आपकी खूबसूरती जो है ना अब सिर्फ बढ़ती जाएगी, क्योंकि अब मार्केट में व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स आ चुके हैं, एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आ चुके हैं, तो लगाइए और खूबसूरत हो जाइए।

की क्या बात है, बड़ा अच्छा गाना एंजॉय कर रहे हो और इसके साथ साथ यहाँ पर अकेले अकेले गाना सुन रहे थे। ओके जी, आप लोगों के लिए लगाया और इसके साथ साथ यहाँ पर आप लोगों के साथ बातें की जाएगी और जरा आप लोगों के मैसेजेस की जाने बातें क्या की रही है देखिए तो जरा। ओके जी, सो अब्दुल रजाक भाई हमारे साथ मौजूद है। अब्दुल रजाक भाई आपको वेलकम करते हैं और साथ साथ दर्दी दिल भी हमारे साथ मौजूद है। वालेकुम अस्सलाम स्वीटी। अली अकबर ब्रोही भाई हमें सुन रहे हैं सकरण से, वेलकम जी, खुश आमदीद। और नूरे संतनु भाई आपने गाने की फरमाइश कर दी। ओके जी ओके। और उसके अलावा टॉपिक के ऊपर कहते हैं कि मेरी स्किन ऑल टाइप है, ऑल टाइप स्किन मतलब समझाइए जरा। और अब्दुल रजा कहते हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम बेहतरीन आहे, बिल्कुल जी बिल्कुल जी, मानो लगान पयाओ, बिल्कुल ये चवन पया। वफा मीर मुनव्वर अली हमारे साथ मौजूद हैं, हेलो। अच्छा ये हमारे साथ हिदायतुल्ला कहते हैं रिश्तेदार। अच्छा ये भी वाकई बड़ा मसला है हमारी जिंदगी के अंदर और कहते हैं। अच्छा फरमाइशें ठीक है जी, फरमाइशें थोड़ी वैसे कम किया करें, आपको पता है ना स्पॉन्सर्ड शो में आप लोगों की फरमाइशें थोड़ी सी इग्नोर की जाती हैं। किशोर भाई कहते हैं कि अदा सच्ची बुधा तू लगाए थो।

यस मां सची में लॻाईंदी आहियां वाइट एसी लवली क्रीम अला सची ॿुधायां थी ॾाढी कमाल जी प्रोडक्ट आहे अगरि तव्हां थोरी ब्यूटी क्रीम तव्हां न लॻाईंदा न तव्हां सोचो था त भई ब्यूटी क्रीम जेका आहे असां गर्मी में न लॻाईंदासीं त तव्हां गर्मी जे मौसम में वाइट एसी लवली क्रीम लॻायो वाइट एसी लवली क्रीम जेका आहे न इहा न सिर्फ़ु तव्हांजी स्किन खे प्रोटेक्ट कंदी छो त हिन जे अंदरि सनस्क्रीन बि मौजूदु आहे बल्कि तव्हांजी स्किन खे ग्लोइंग बि बणाईंदी ख़ूबसूरत बि बणाईंदी ऐं तव्हां पंहिंजी स्किन ते ॾिसंदा त वाक़ई केॾो फ़र्क़ु आहे सो वाइट एसी लवली क्रीम त तव्हां लाज़मी लॻाइजो उहे माण्हू जेके ब्यूटी क्रीम खां थोरो अवॉइड कंदा आहिनि ओके जी दर्दे दिल कहती है कि टॉपिक चंदा कॉल पे बताऊंगी चले हाँ ठीक है ये अच्छी बात है कॉल पर बताइएगा और उसके अलावा हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जी पैनल की जाने बातें हैं तो वालेकुम अस्सलाम मीरपुर खास से अब्दुल्ला महर यहाँ आपका शो माशाल्लाह है और इंशाल्लाह क्रीम खरीद करूंगा सॉन्ग फायज अली का सुनाइएगा ठीक है जी ठीक है वैसे कौन सी क्रीम आप खरीदेंगे ये जरूर मुझे बताया करें ठीक है और ये मोरो से हमारे साथ फिरदोस मौजूद कहती है सलाम एस एम वालेकुम अस्सलाम आप कैसी है मैं बहुत अच्छी लेकिन आपकी आवाज थकती नहीं क्या शो खत्म होने के बाद भी अगले शो आने तक मेरे दिमाग में घूमती रहती है अब तो एडिक्शन लग गई है बाजी आप मुझे ये वाला सॉन्ग सुना दीजिएगा और ये गाना स्पेशली आपको डेडिकेट है अच्छा मेरी जान में कोशिश करूंगी कि ये बिल्कुल गाना आपको सुनाएंगे और बहुत शुक्रिया आपका

0: हां जी तव्हां बि ॾिसंदा जॾहिं तव्हां इस्तेमाल कंदा वाइट हेयर जी लवली क्रीम.
1: इश्क मुश्क होता है ऐसा आग और पानी जैसा, इश्क मुश्क होता है ऐसा.
0: सो बिल्कुल वाइट हेयर जी लवली क्रीम हुजे या वरी वाइट हेयर जो साबुण हुजे या वरी फेस वॉश हुजे, तव्हां इहे चीज़ूं जेके आहिनि इहे अहिड़ियूं चीज़ूं आहिनि जेके तव्हां लॻाए सघो था बाबा दिलि खोले करे, छो त ही हर स्किन टाइप जे लाइ हूंदियूं आहिनि. ऐं साबुण त हर कोई इस्तेमाल कंदो आहे, फेस वॉश बि हर कोई इस्तेमाल कंदो आहे. अॼुकल्ह जेको आहे न तव्हांखे हिकिड़ी फेयरनेस क्रीम जी बि ज़रूरत हूंदी आहे, छो त गर्मियुनि जो मौसम अची वियो, त फेयरनेस क्रीम जे तौर ते तव्हां वाइट हेयर जी लवली क्रीम खे इस्तेमाल करे सघो था. तव्हांजी स्किन खे प्रोटेक्ट कंदी ऐं तव्हांजी स्किन खे ग्लोइंग बि बणाईंदी. सही आहे, समझी विया न? ओके चाचा खालिद भी हमारे साथ मौजूद है. वालेकुम अस्सलाम. मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ चाचा, आप बताएं कैसे हो? जी बिल्कुल, आप हमारा शो सुन रहे हैं और कहते हैं अच्छा ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ? अच्छा जेबुल निसा हमारे साथ मौजूद है. हाय आपी सिद्रा. हेलो जेबुल निसा और चाचा खालिद, बिल्कुल आपको वेलकम करते हैं. वफा अब्दुल गफ्फार खास के लिए हैं फ्रॉम न्यू जतोई. आपका आवाज बहुत प्यारा है, मैं आपका शो डेली सुनता हूँ. बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू, आपका वेलकम है. इरम हमारे साथ मौजूद है. इरम आपका भी बहुत शुक्रिया. आकाश ओड हमारे साथ मौजूद है फ्रॉम मीरपुर खास, कहते हैं शुगर मील योर शो इज नाइस बाजी, मेरी स्किन ऑयली ऑयली रहती है, क्यों इसका हल तो बताएं जरा और प्लीज प्ले आतिफ असलम सॉन्ग. ओके जी, ऑयली स्किन का तो बस एक ही हल है कि आप जो है ना अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं व्हाइट एज की डॉक्टर पिंपल वाला ट्यूब, डॉक्टर पिंपल के नाम से अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर से परचेज करेंगे ना, तो ये एक ऐसा ट्यूब है जिसके इस्तेमाल के बाद अगर आपकी स्किन ऑयली भी है ना तो आपके चेहरे पर ऑयल कंट्रोल हो जाता है. और जिनकी स्किन ऑयली होती है ना उनके साथ ये बड़ा मसला होता है कि उनके चेहरे पर एक्नीज काफी ज्यादा आते हैं. तो अगर आपकी स्किन भी वाकई ऑयली है तो अगर आप चाहते हैं कि भाई हमारे चेहरे पर ऑयल कंट्रोल हो तो आप डॉक्टर पिंपल वाला ट्यूब इस्तेमाल करके अपने चेहरे के ऑयल को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि ये आयुर्वेदिक फार्मूला है. और अगर आप भी चाहते हैं कि भाई कुछ भी सबसे पहले जो चीज खत्म करने वाली होती है स्किन से वो ऑयल होता है, तो ऑयल को खत्म करना चाहते हैं गर्मियों में तो वैसे ये बहुत ज्यादा मसला बढ़ जाता है, तो ऑयल को खत्म करने के लिए आप डॉक्टर पिंपल वाला ट्यूब इस्तेमाल कर सकते हैं. ये भी ऑल स्किन टाइप के लिए है, आयुर्वेदिक है, तो आप इजीली लगा सकते हैं. यानी कि ये नहीं कि इसके अंदर पता नहीं क्या ऐड किया गया होगा, पता नहीं किस तरह के प्रोडक्ट से ये तैयार शुदा होगा, तो आप इजीली लगा सकते हैं. इसके अंदर सारी चीजें ऐसी डाली गई हैं कि आपकी स्किन को फायदा ही पहुंचाएंगे. और उसके साथ साथ लुबना हमारे साथ मौजूद है. वालेकुम अस्सलाम. मेरे साथ मौजूद है अर्जी भुट्टो से, हमारा शो सुन रही है. क्या बात है लुबी, आपको वेलकम करते हैं.
2: पहली चिंगारी भड़के जहां पर दिल वाला ही बस ठहरे वहां पर.
0: हाय हाय

ओके जी, फहद दे रही है, सऊद दे रही है, नवाबशाह से हमारा शो सुन रही है, अदी बिल्कुल ठीक ठाक है, आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आ रहा है, बहुत शुक्रिया। और उसके अलावा ये मौजूद है, क्या हाल है आपके जी? मैं ठीक हूँ, वालेकुम असलम, सिकंदर अली जरवारी, अरसलान अली अच्छा जावरी है, ठीक है, कामरान अली जावरी है, रिजवान अली जावरी है, नेमतुल्ला जावरी, समीर अहमद जावरी, तनवीर अहमद जावरी, जमील अहमद जावरी, गोट रोशन अली जावरी, अली आबासी हमारे साथ मौजूद है और आपको वेलकम करते हैं। ये मौजूद है जी, वालेकुम अस्सलाम, मुस्कान हमारी स्किन माशाल्लाह सही है, फर्स्ट क्लास है, सागर नियाज जानियो भाई हमारे साथ मौजूद है। चलें जी, आपकी स्किन हमेशा, मैं तो चाहती हूँ फर्स्ट क्लास ही रहनी चाहिए, क्योंकि स्किन अच्छी होती ना तो जिंदगी वाकई बड़ी अच्छी लग रही होती है, तो स्किन को फर्स्ट क्लास रखिए और इस्तेमाल करते जाइए व्हाइट एज के प्रोडक्ट्स एंड ये स्किन के प्रोडक्ट्स। ओके जी, खूबसूरतियाँ हासिल करते जाइए, प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद रहते जाइए। टाइम हो जाता है जरा हम न्यूज ब्रेक की जानिब जाएंगे, उसके बाद शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक होने वाली है, तो वापसी जल्दी आप लोगों के पास आते हैं, बस आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा, सुनते रहिए, इंजॉय कीजिए और हमारा साथ दीजिए। मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूँ, सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग, व्हाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो।

0: पानी की खोड के खिलाफ आबादगारन जो एहतजाज, फैजगंज टंडवादम में आबादगारन जा मुजाहिरा, फैजगंज एफियोवा ए अली नवाज वाह में पानी की खोड के खिलाफ आबादगारन जो मुजाहिरो। आबादगारन मूजिब पानी न मिलण सबब जमीनू सुकी पया आहिनि, पानी फराम कयो वञे। टंडवादम जे जाम बेराजमान कंदड़ नेतरा मान जे आबादगारन जो पानी जे खोड खिलाफ़ एहतजाज। आबादगारन जो पानी खोड सबब फसल सुकी विया आहिनि। मीरपुर बटोर में भी आबादगारन जो पानी खोड खिलाफ़ मुजाहिरो, पानी फराम करण जो मुतालबो। कराची के सुपर हाईवे वाले इलाके में पंजाब बस अड्डे से फायरिंग, धीरे के जनाजे में शिरकत लाए घोटकी वेंदड़ पीए कतर से भाव जख्मी। पुलिस मूजिब मंसूर धीरे की फौतगी वाले इतला से नंढे भाव से गड घोटकी वही रो तो वाक्य पेश आयो। शुरुआती जांच में वाक्य फुर मजम्मत जो लगी रो है। पेतो लगन में गाठटोड़ वाद के अवाम रद्द कर छो। शहर में चवण है पेरे ही महंगाई के मुंह दियो। हुकूमत पेट्रोल महंगो कर जुल्म किया है। हुकूमत पेट्रोल अगन में कल वाद के फौरी तौर पर वापस वे रिलीफ फराम किया वे। पिंगरो के गोट खुदा बख्शी सबाणी में नौजवान कुहाड़न जा वार करे कतल, वारसन जो लाश रखी धरणो जवाबदार। गिरफ्तार करण जो मुतालबो जवाबदार 21 साल के भुट्टो सोलंकी के कुआड़ी जा वार करे कतल कयो। वासन मौजूद जवाबदार मुनवर हिसवानी नौजवान के कतल कयो, खेस गिरफ्तार किया वे। पन वाकिल वेजो पसंद पाड़े लाए घर निकतल नारी के वासन जो नौजवान के घर से मोबाइल हमलो। मोबाइल तौर से चार औरतू अगवा, नौजवान सदीक मर के वासन मौजूद हथियार बंद। मसमा दातुल अलाजिवाई कायमा ए साहिबा मर के अगवा कर पुलिस कुछ भी ना कर रही। पुलिस के बाद औरतू अगवा नायन थी, अगवा वारा इतला कूड़ा। कोर्ट गुलाम मोहम्मद वेजो जमीन में चैन बार की माओ जो तशद थे लाश हथ। शांति नगर वासन सीता दी बिजल कूली जो लाश घर भरसा बनीमा मिलो। औरत जी माओ मूजिब धी के कतल कर वो है। जवाबदारन के गिरफ्तार किया वे। पुलिस मूजिब पोस्टमार्टम जो इंतजार है। वाकई की जांच कई वे। जेकमबाद के पेटी बाजार में सखरवासी शख्स जो लाश हथ। पुलिस मूजिब लाश सुप खान मोहम्मद तौर थी है। तशद जहा निशान नजर न था अचन।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन। मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम, 03000002724, निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 03013865453।

0: It's 4:30 PM. This time check is brought to you by
1: Hame Diamond Glow Bleach Cream, jo deep clean kare aur de 4 guna brightness, chamak aise diamond skin jaisi. Hame Diamond Glow Bleach Cream.
2: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम. इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ 2 दिन में. डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो. डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो.
3: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो. बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस. इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें. 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है. अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं. तो भाई साहब क्या समझे?
4: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का.
5: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक के सामू वदन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर

0: मादे जी अल्सर, मादे जी जलन, दिली जो वधन, जिगर जा मर्ज, हेपेटाइटिस बी सी, गुर्दे जी पथरी, मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो, गुर्दन जो इन्फेक्शन, चेहरे जो रंग सांवरो, चेहरे जी खारिश, फट फुरड़ियों, बारन में कद जो न वधण, मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण, उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो। राब्ते लाइ 0301-2196-851।
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलस होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद, आई मा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनिया जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनिया जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टैचिंग मशीन जे ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त, रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ते जिलाए, आसिम हुसैन आराई, 0307-359-2120।

0: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
1: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन ते सिर्फ GFM 88 ने

0: It's 5 p.m. This time check is brought to you by
1: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे. हीउ पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़.

0: अमेरिका ईरान में ईंदड़ हफ्ते इस्लामाबाद में बीहर गालियूं शुरू थियण जा इम्कान। मामला तय न थियण ते सदर ट्रंप जी वरी ईरान के ऑपरेशन फ्रीडम प्लस शुरू करण जी धमकी। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल रिपोर्ट में चयो है त अमरीका ईरान सालिसी कंदड़ धुरियन सां गॾिजी शुरूआती माहिदे ते कम करे रहिया आहिनि, जंहिं तहत हिकु महीने ताईं गालियुनि लाइ फ्रेमवर्क तय कयो वेंदो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बि अॼु ईरान तर्फ़ां अमरीकी तजवीज़नि ते जवाब मिलण लाइ पूरी उमीद। डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त ईरान सां मामला तय न थिया त ॿीहर प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस तरफ़ वधी सघूं था। प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस में ॿियूं शयूं बि शामिल हूंदियूं। पंहिंजो कम करे रहिया आहियूं, कंहिंजी डेडलाइन ते को बि ध्यान न आहे। ईरानी परडेही वज़ारत जे तर्जुमान इस्माइल बकाई चयो आहे त तेहरान अमरीकी तजवीज़नि ते गौर करे रहियो आहे, नतीजे ते पहुतासीं त ऐलान करे छॾींदासीं। ईरानी फ़ौज समूरियुनि सलाहियतुनि सां मुकमल तौर ते तयार आहे, सूरतहाल ते बि नज़र रखियल अथसि। ईरान अञा बि केतिरा ई महीना अमरीकी नाकाबंदी बर्दाश्त करे सघे थो। अमरीकी घुर्ज इदारे CIA ट्रंप इंतज़ामिया खे आगाह करे छॾियो। आलमी नशियाती इदारे मूजिब CIA पंहिंजी नई रिपोर्ट में ॼाणायो आहे त तेहरान वधीक 4 महीननि ताईं अमरीकी नाकाबंदी बर्दाश्त करे सघे थो, जंहिं सबबि ईरान अमरीका जो दबाव घणी हद ताईं क़बूल न करे रहियो आहे। तेहरान जी ॻाल्हियुनि में सुस्ती जो सबब बि इहो ई आहे। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ हलंदड़ महीने चीन जो दौरो कंदो। सदर शी जिनपिंग ऐं वज़ीर आज़म ली चियांग सां मुलाक़ात कंदो। ज़रियनि मूजिब वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ 23 खां 25 मई ताईं 3 ॾींहनि जे दौरे ते चीन वेंदो। पाक चीन लाॻापनि खे 75 साल मुकमल थियण ते थींदड़ तक़रीबनि में शिरकत बि कंदो। वज़ीर आज़म जे दौरे दौरान पाकिस्तान ऐं चीन विच में मुख़्तलिफ़ मुआहिदनि ते
1: खु़शहाली की नवीद दौर जो आगाज करे साहिबान ज़री मर्कज़नि ते दस्तियाब आहे।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे 4 गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम। लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे 4 गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम।
4: क्या देख रहे हो, ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600cc कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे।
5: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
6: माशाला फौजी पाइप फैक्ट्री नर्स गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेहरापुर असां वटि जॻह जूं ॾियारियूं जॻह जा पावा ऐं पाइप 1.5, 4, 6, 9, 12 इंच में प्लेन ऐं कॉलम में मौजूद आहिनि। फौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
4: क्या देख रहे हो, ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600cc कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 578 शहरों में बैंक अल हबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है।
7: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
4: तो भाई साहब क्या समझे।
5: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे।
8: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरा पर राब्ते जे लाए 0320180003।

0: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम लीगल कॉर्नर में आवाया अहां सां गॾु बाबर शेख ऐं मूंसां गॾु स्टूडियोज़ में मौजूदु आहिनि एडवोकेट शहबाज़ हफ़ीज़ साहब। ऐं अॼु जो असांजो टॉपिक आहे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, यानी अमानत में खयानत। ऐं अॼु जे असांजे टॉपिक सां रेलिवेंट अव्हांजा जेके बि सवाल हूंदा उहे असां प्रोग्राम में शामिल कंदासीं। थोरो ओवरव्यू ॾींदो हलां टॉपिक खे, थोरो ईज़ी वे में अव्हांखे मां सम्झाईंदो हलां, त इन खे असां ईअं खणी चई सघूं था त अमानत में खयानत या कंहिंसां दगा करणु कहिड़े बि पॉइंट ऑफ व्यू सां। फॉर एग्ज़ाम्पल, तव्हां ॾिठो हूंदो त बैंक्स वग़ैरह में अव्हां अक्सर अहिड़ा मसला ॿुधिया हूंदा जंहिंमें कैश वग़ैरह ॾिनी वेंदी आहे, पोइ उहा अगरि हुन अकाउंट में ट्रांसफर या डिपोज़िट न पई थिए ऐं हू जेको बैंकर आहे हुनखे मिसयूज़ करे पियो, त हिनखे असां ब्रीच ऑफ ट्रस्ट चई सघूं पिया। कंहिंखे असीं अमानत ॾियूं पिया का बि शइ ऐं उन में हू ख़यानत करे पियो, त उहो बि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट आहे। इन खां अलावा काफ़ी सारा अहिड़ा जेके आहिनि त मसला आहिनि जेके ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में अचनि पिया। को एजेंट या क्लाइंट अव्हां ॾिठो हूंदो त उन वटि असां खां प्रॉपर्टी जा डॉक्यूमेंट्स अमानत तौरु रखाराईंदा आहियूं, पर उहो बग़ैर की असांजी इजाज़त जी उहा सेल करे छॾींदो आहे, त इहो बि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट आहे। ऐं पाकिस्तान पैनल कोड जे सेक्शन 404 खां 409 में ही ऑफेंसेस जेके आहिनि इन्हनि जी पनिशमेंट्स बि ॿुधाई वई आहे ऐं इन जा लीगल कॉन्सिक्वेंसिस बि थी सघनि था। इन सां वाबस्ता असां सां गॾु स्टूडियोज़ में एडवोकेट शहबाज़ हफ़ीज़ साहब मौजूदु आहिनि। 10 ईयर्स खां वठी तकरीबन ही जेको आहे त एडवोकेसी सां वाबस्ता आहिनि, एज़ वेल एज़ लेक्चरार बि आहिनि लॉ कॉलेज में, ऐं तमामु सुठी हिननि वटि नॉलेज आहे अबाउट द लॉ, ऐं तमामु घणा हिन जा कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स बि जेके आहिनि रिटर्न क्वालिफाई थियल आहिनि। सो सभ खां पहिरां एडवोकेट शहबाज़ हफ़ीज़ साहब खे अस्सलामु अलैकुम चवंदासीं। शहबाज़ साहब, वेलकम टू द स्टूडियो।
1: थैंक यू वेरी मच आफ्टर लॉन्ग टाइम।
0: यस, लॉन्ग टाइम। ऐं असांजा व्यूअर्स तव्हांखे तमामु घणो मिस पिया कनि।
1: वॾी महिरबानी, बट क्रेडिट तव्हांखे वेंदो इहो जेको प्रोग्राम जो आहे। ऐं अलहमदिल्ला हिन में जेको आहे इनोवेटिव शयूं बि तव्हां कयो था, मुख़्तलिफ़ ॿिया जेके बि पैनल एडवोकेट्स आहिनि उन्हनि खे बि इनविटेशन ॾियो था पिया। ख़ुशी आहे त पूरो इन्वायरमेंट बि तव्हां चेंज करे छॾियो आहे। ऐं थ्रू जेको आहे न, पहिरियों असां पंहिंजो लिसनर्स लाइ वेंदा हुआसीं, हाणे त तव्हां आइडियो वारो सीन ऐं वीडियो वारो सीन बि जेको आहे न हिते क्रिएट करे छॾियो आहे, त जीअं नॉलेज आहे त हिकिड़े प्लेटफॉर्म ते अवेलेबल न हुजे, जेके बि सोशल मीडिया जा प्लेटफॉर्म्स आहिनि उते ऑलरेडी हर शइ जी अवेलेबल हुजे। वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन्स टू यू फॉर क्रिएटिंग सच अ ग्रेट प्रोग्राम फॉर द पीपल to get the benefit from that program.
0: Thank you sir, it's my pleasure. So Shehbaz saab, topic te achu pya criminal breach of trust. Aksar tama ditu aaye ta amanat mein khayanat jeko aaye na article thodo wadhi vayo aaye ai ki wadi kai shi amanat rakhai pe vane ta hu te chi pe theek aaye yari te bhalai thi vai jo mo wadi achi vai mukhe use pe karni pave ai je amanat rakhrai aaye po wo jeko aaye ta pyo recover kando vate ta in te aha sab kha pehra asan je jeko aaye ta viewers ki yo budhayo ta jeko yo criminal breach of trust aahe आहे छा हिन जो लीगल अगरि असां डेफिनेशन ॾिसूं।
1: एज़ पर बाबर अगरि लीगल डेफिनेशन ॾिसंदो जेकी पाकिस्तान पीनल कोड में लिखियलु आहे, उहा लिखियलु आहे की वेन अ प्रॉपर्टी इज़ हैंडेड ओवर टू समवन एंड दैट पर्सन इज़ यूज़िंग दैट प्रॉपर्टी फॉर हिज ओन पर्पज, आर ही इज़ अ डिस्पोज़िंग ऑफ द प्रॉपर्टी आर यूज़िंग ऑफ द प्रॉपर्टी इलीगली गिविंग लॉस टू समवन एंड गेनिंग इलीगल गेन टू हिमसेल्फ, दैट इज़ कॉल्ड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। माना कंहिं माण्हू अमानत में कंहिंखे ॾिनी हुजे अमानत तौरु शइ, त हिन जो ख़्यालु रखिजो, उनखे पंहिंजे पर्पज़ लाइ इस्तेमालु करे छॾे ऐं उनजी ख़यानत करे छॾे, ऐं दैट डेफिनेशन इज़ कॉल या दैट कॉन्सेप्ट इज़ कॉल क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट।
0: अच्छा क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऐं क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, इन ॿिन्हिनि में छा डिफरेंस आहे?
1: बाबा, दीज आर टू डिफरेंट एंड डिस्टिंक्टिव कॉन्सेप्ट। मिस एप्रोप्रिएशन इज़ अ डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन,
0: ठीकु आहे,
1: बदनीयती सां कंहिं शइ खे काई शइ मिली हुजे या काई शइ ॾिनी हुजे या हैंड ओवर थी हुजे वॉलंटरी। पहिरों त क्वेश्चन तव्हां इहो ई कयो त वट काइंड ऑफ थिंग्स आर बींग डिसअप्रोप्रिएट या मिसअप्रोप्रिएटेड, ऐं उहो कहिड़ी शइ जो जेको आहे ट्रस्ट ब्रेक थो थिए पियो। सो आई विल इंक्लूड हेयर त ओनली मूवेबल प्रॉपर्टी इज़ बींग मिसयूज बाय, जेके असां चवंदा आहियूं उहा प्रॉपर्टी दैट कैन बी शिफ्टिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट इज़ कॉल्ड मूवेबल प्रॉपर्टी।
0: ऑलराइट,
1: हिते मिसअप्रोप्रिएशन मूवेबल प्रॉपर्टी जो थींदो आहे। मूवेबल प्रॉपर्टी काई बि थी सघे थी, फ्रॉम सेल फोन टू मोटर बाइक, एनीथिंग फ्रॉम प्रोमिसरी नोट टू बैंक चैक्स, ठीकु आहे, अगरि तव्हांजा सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हुजनि या प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स हुजनि, उन्हनि खां वठी करे काई बि अहिड़ी शइ जेके तव्हां कंहिं माण्हू खे इंट्रस्ट ट्रस्टिड कयो था पिया कंहिंखे अमानत तौर वॉलंटरली रखारायो था पिया पर लेटर ऑन ही इज़ यूज़िंग दैट थिंग फॉर हिज़ ओन पर्पस या मिस यूज़िंग इट और वेदर ही इज़ अ डिस्पोज़िंग ऑफ डिस्पोज मतिलबु इहो आहे त या त हुनखे हुनखे ख़र्च थो करे छॾे या यू सेल आउट हिम सो समवेयर एल्स ऐं हुनजो जेको बि गेन थो थिए पाण वटि थो रखे पियो दैट इज़ थिंग दैट इज़ थिंग दैट थिंग इज़ कॉल या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में बि वञे थी ऐं मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी में बि वञे
0: अच्छा तव्हां जीअं चयो मूवेबल प्रॉपर्टी जेकी आहे त उहा जेका आहे त हुन में अचे पई हाणे इन में डॉक्यूमेंट जीअं मूं शुरूआत में इंट्रो में बि पंहिंजो ॿुधायो त डॉक्यूमेंट्स फॉर एग्ज़ाम्पल एजेंट वटि रखिया वेंदा आहिनि अक्सर तव्हां ॾिठो हूंदो ब्रोकर्स वटि ऐं उहे ॾिसंदा आहिनि त बाबा ॾह वीह रुपया अगरि वधीक मिलनि पिया हुनखे सेल आउट करे छॾंदा आहिनि विदाउट जेको आहे
1: ट्रस्ट करे ॾिनी ऐं ट्रस्ट खे ब्रेक कयो आहे ऐं उहा शइ अॻिते तव्हां फॉरवर्ड करे छॾी आहे सेल आउट करे पर हुनखे अञा ताईं इंफॉर्म न कयो अथव एंड दैट मैन स्टिल इन अ कॉन्सेप्ट दैट दैट थिंग इज़ अवेलेबल टू दैट पर्सन ए बी सी जेको बि हुजे सो उन जे उन ट्रस्ट खे उन ट्रस्ट जी भंजकड़ीअ खे उन ट्रस्ट खे टोड़ण खे वी कॉल्ड द क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट
0: सही अच्छा सेक्शन से अगरि अचूं पिया जेको पीपीसी में आहिनि 404-409 इन जो थोरो ओवरव्यू ॾेई वठो त उन में जेके आहिनि त इन खां अलावा जेके आहिनि त ॿिया कहिड़ा अहिड़ा जेके आहिनि त ऑफेंसिस आहिनि जेके इन सेक्शन जे तहत ब्रीच ऑफ ट्रस्ट पे अचनि पिया
1: पाकिस्तान पीनल कोड में जेके इहे कॉन्सेप्ट आहिनि उहे अचनि था 403 खां वठी डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409 ताईं इहो पार्टिकुलर जेके सेक्शन्स आहिनि दीज सेक्शन्स आर एलोकेटेड फॉर द मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी जंहिंमें तव्हांजे डिसऑनेस्ट मिस अप्रोप्रिएशन अचे थी पई प्लस में क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट अचे थी पई हैंड ओवर टू द प्रॉपर्टी टू सर्वेंट्स टू क्लार्क्स टू एजेंट्स ऐं टू पब्लिक ऑफिसर ऐं उहो हुन जी अगरि मिसयूज़ करे इहे सॼे हिन ज़िमरे में अचनि था क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में ऐं मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी में
0: असां लेट सपोज एज्यूम कयो असां का शइ जेका हिते कंहिं वटि जेका हिते बतौर अमानत रखायूं पिया फॉर एग्ज़ाम्पल असां मोबाइल फोन खे ॾिसी वठूं ठीकु आहे ऐं असां चऊं पिया हीउ मोबाइल फोन तव्हां पाण वटि रखो कला खां बाद में मां अचां पियो तव्हां खां वठां पियो ऐं हुनजो मिसयूज़ पियो करे छॾे हुनखे पासवर्ड बि हिन टेड़ी अख सां ॾिसी छॾियईं ऐं हुनजो मिसयूज़ कयईं हुन मां नंबर्स कढी वरितईं डेटा कढी वरितईं
1: क्लियरिफाई कंदुमि की अगरि प्रॉपर्टी अगरि काई बि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट थिए थो पियो उन लाइ टे शयूं किथे टे लिखियल आहिनि किथे चारि लिखियल आहिनि बरहाल एस पर माए ओपिनियन जेको मां पढ़ियो आहे त हुन में चारि शयूं टे शयूं रिक्वायर्ड आहिनि सभ खां पहिरियों इहा हूंदी आहे त प्रॉपर्टी दैट इज़ गिवन बाय समवन वॉलंटरली ॾिनल हुजे वॉलंटरली इंट्रस्टेड हुजे इंट्रस्टेड जो मतिलबु आहे उनखे असां अमानत तौरु रखंदा आहियूं सेकेंड दैट पर्सन हैज़ इलीगली यूज़ड इट फॉर इट्स ओन पर्पस वेदर द कॉन्ट्रेक्ट एक्सप्रेसली आर इम्प्लाइडली इम्प्लाइड जो एक्सप्रेसली इम्प्लाइड जो मतिलबु आहे या त असां वर्बली उन्हनि खे उहा शइ ॾिनी हुजे
0: सही
1: रखो पाण वटि असां तव्हांखे हिकिड़े कंसर्न टाइम ते हिकिड़े रीज़नेबल टाइम ते असां तव्हांखां वठी छॾंदासीं या इम्प्लाइडली हुजे इम्प्लाइड माना एक्शन्स ऐं कंडेक्स जे थ्रू जे असां इशारतनि चवंदा आहियूं खणी छॾो या असां इशारतनि चवंदा आहियूं असांखे ॾेई छॾो या असां इशारनि ते चवंदा आहियूं हिनखे हिते रखो दैट इज़ इम्प्लाइड कॉन्ट्रेक्ट टियों आहे दैट मैन वंस अगेन मां रिपीट थो कयां दैट मैन हैज़ वेदर ही हैज़ यूज़

0: इन मैटर उहा क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन में या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में
1: साम्हूं
0: ई न करे बस यू नो देट के हिन अगरि कॉल कई बि हूंदी घर ई कंदी हाणे हाणे हिते छा थियो डिस्ट्रस्ट कीअं थो क्रिएट थिए मिसट्रस्ट कीअं थो क्रिएट थिए की अगरि उहो ई फोन खणी करे उहो ई अगरि को एक्सटोर्शन मनी जे लाइ कंहिंखे तव्हांजो फोन यूस करे एक्सटोर्शन मनी जे करे कॉल थो करे त इन ई नंबर ते या थ्रू तव्हांजे या मैसेज थो करे टैक्स थो करे त मूंखे इलीगल मनी पुॼायो ठीकु आहे न नाओ ही इज़ अ ब्रेक यूर मिसट्रस्ट छो की हुन तव्हांजे फोन जो ग़लति
1: इस्तेमालु एक्ज़ाम्पल ॾेई था सघूं असां जेके मोबाइल वॉलेट्स हूंदा आहिनि पैसा हुजनि फीडबैक आयो आहे असां उहे शामिल कंदासीं ऑडियंस जा बि सवाल जेके आहिनि इंक्लूड कयूं पिया हिकिड़ो ही वॉइस नोट आहे अचो त ॿुधूं पिया
2: तव्हांजो प्रोग्राम ॿुधी रहियो हुयमि त तव्हांजे टॉपिक सां रिलेटेड मुंहिंजो बि हिकिड़ो सवाल आहे त अगरि कंहिंसां क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट थी वञे त FIR कीअं दर्ज कई वञे ऐं हुन लाइ कहिड़ा डॉक्यूमेंट या सबूत जी ज़रूरत पई सघे थी असांखे थोरो हिन ते असांखे ॿुधाईंदो
1: ठीकु आहे अदा तैयब सर हिननि चयो त अगरि थी वञे थो इहो पहिरियों त असां अञा थोरो मां चाहियां पियो त तव्हां असांखे एग्ज़ाम्पल्स ॾियो त जीअं असांजो कॉन्सेप्ट थोरो क्लियर थिए त इन खां अलावा ॿिया कहिड़ा एग्ज़ाम्पल्स थी सघनि पिया जीअं असीं हवालो ॾिनोसीं PPC जो ऐं PPC में जेको आहे त 404 में जीअं लिखियलु आहे डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी जेको आहे त डिसीड पर्सन इन जो कीअं थी सघे थो कंहिंजी विल आहे उन में जेको आहे त का खुर्द बुर्द कई वञे पई ऐं उनजी जेकी छॾियल प्रॉपर्टी आहे उन ते जेको आहे त
0: जी मां वन सेकेंड ॿुधायां त जीअं असां हिते ज़िक्र कयोसीं उहा मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी या मिस ट्रस्ट या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट उहा आख़िर प्रॉपर्टी आहे कहिड़ी वन सेकेंड रिपीटिंग दैट थिंग फॉर द ऑडियंस जेके असांखे ॾिसे थी ऐं जेकी असांखे ॿुधे थी उन्हनि जे लाइ अगरि विच में बि अगरि असांखे कंहिं जॉइन कयो आहे त हुन जस्ट फॉर देयर रिपीटेशन फॉर देयर सेक ऑफ रिपीटेशन मां उहो शइ ॿुधायां थो मूवेबल प्रॉपर्टी मूवेबल प्रॉपर्टी में सपोज़ अगरि को माण्हू आहे कंहिंजो सर्वेंट आहे घर में अकेलो रहे थो कुराड़ो आहे या को कुराड़ी आहे ओल्ड एज आहिनि रहनि था पिया या हुनजी फैमिली ॿाहिरि शिफ्ट थियल आहे हाणे उहो चई थो वञे पंहिंजे सर्वेंट खे या पंहिंजे क्लार्क खे चई थो वञे त मुंहिंजे अकाउंट में हिन टाइम 20 लख रुपया पिया अथव ऐं जेकी मुंहिंजी गाॾी आहे अगरि मूंखे कुझु थी वञे त मुंहिंजी गाॾी ऐं मुंहिंजो जेको अमाउंट आहे उहो तव्हां मुंहिंजे फैमिली मेंबर्स खे शिफ्ट करे छॾिजो
1: ठीकु आहे
0: हाणे डिसीस पर्सन जे दौरान उहा शइ हुननि खे ख़बर हुई लेटर ऑन त जॾहिं हुननि इंफॉर्मेशन छा ॾिनी गाॾी त हुननि हिन वर करे छॾी हुननि 20 लख जी जॻह ते 5 लख पाण यूज़ करे छॾिया पाण यूज़ करे छॾिया ऐं बकाया 15 लख ॾिननि जेकी हुननि 5 लख खयां न देट इज़ कॉल्ड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ
1: ट्रस्ट
0: ईअं ई कुझु माण्हुनि खे ज़ेवर हूंदा आहिनि अगरि मिसाल लेडीज़ हूंदियूं आहिनि कमु करण वारियूं अगरि औरतूं हूंदियूं आहिनि या हुनजी ख़िदमत वारियूं हूंदियूं आहिनि सर्वेंट्स हूंदियूं आहिनि या मेड सर्वेंट जेके चइबो आहे अगरि उहो हुननि वटि ज़ेवर
1: आहिनि
0: सपोज़ हुनखे 3 तोला 5 तोला या सपोज़ 10 तोला सोनो आहे त उन्हनि पंहिंजे वली वारसनि खे हाली न ॿुधायो आहे त मूं वटि केतिरो सोनो आहे पर हुनजे मेड सर्वेंट खे ख़बर आहे नाओ शी लेडी इज़ डाइट ठीकु आहे न औरत गुज़ारी वई औरत गुज़ारे वञण खां पोइ त नाओ हुन छा कयो अलमारी खोली अलमारी मां 1 तोलो 2 तोलो जेको बि सोन जेतिरो खणी सघी हुन
1: उहो
0: क्रिमिनल ब्रीच में नथा अचनि उहे चवनि था मिसअप्रोप्रिएशन में मिसअप्रोप्रिएशन जो मां कॉन्सेप्ट वन सेकेंड तव्हांखे क्लियर कयां क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में वॉलंटरली शइ हैंड ओवर थिए थी पई बदनीअ थी बाद में थी पैदा थिए मिसअप्रोप्रिएशन में शइ मिले थी पई या कोई असांखे ॾिए थो पियो पर इंटेंशन बाद में जेकी डिसऑनेस्टी जेकी पैदा थिए थी उहा लेटर ऑन पैदा थिए थी इनिशियल हुन जो न हूंदो आहे इंटेंशन न हूंदो आहे त मां इहा शइ मिसअप्रोप्रिएट कयां या हिन अमानत में खयानत कयां जीअं तव्हां ॿुधायो पिया त अगरि को डिसीज़ कुराड़ो आहे अगरि को गुज़ारे थो वञे या को विल लिखाए थो वञे हाणे विल में हुनखे ॿुधायो थो वञे मुंहिंजी 200 एकड़ ज़मीन आहे ऐं मुंहिंजे फैमिली मेंबर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड कई वञे लेटर ऑन अगरि उहो विल खे एग्ज़ीक्यूट करण वारो उन में सिर्फ़ु हेर फेर करे छॾे त न 200 एकड़ मां 10 एकड़ जेकी ज़मीन आहे उहा मुंहिंजी बि आहे त देट जेको पॉइंट आहे जिते उहो मिसट्रस्ट क्रिएट थो थिए देट इज़ कॉल्ड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट सो टू डिफरेंट थिंग्स
1: हा सम्झी वियो जीअं मतलबु कंहिं ते ट्रस्ट हूंदो आहे ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे त अमानत बि हुनखे ई ॾिनी वेंदी आहे
0: अमानत
1: उहो ट्रस्ट जो अगरि ग़लति ग़लति इस्तेमालु करे पियो त उहो जेको आहे त हिन
0: में क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड मिसअप्रोप्रिएशन, दीज आर टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स.
1: सो काफ़ी सारा वॉइस नोट्स बि आया आहिनि ऐं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो वक़्तु बि थी वियो आहे.
0: प्लीज़ ऐं तव्हांजे हुन सवाल ते तैयब जेके अदे पुछियो हुयो
1: हुन सवाल ते वापसि ईंदा उहो असां ब्रेक खां पोइ ॾियूं. अदा तैयब, तव्हां असां सां गॾु कनेक्ट रहिजो ऐं असांजा जेके ऑडियंस ॿुधनि पिया उन्हनि खे बि असां हिन मुतालिक जेको आहे त इंफॉर्मेशन ॾींदासीं जेको हिननि सवाल कयो, ऐं तव्हांजा बि जेके सवाल आहिनि तव्हां करे सघो था. असांजो नंबर आहे 03000

0: 1-800-811-3488. So short commercial breakdown on pia.
1: It's 5:30 p.m. This time check is brought to you by
2: Heme Diamond Glow Bleach Cream. Kudrati jizan sa tayar kayal. Jekade kudrati nikhar. Saaf, naram ay roshan chehro. Heme Diamond Glow Bleach Cream.
3: अवां जी स्किन डल ए बेरोनक लगे थी हाने पहिजी स्किन खेडियो एक नव गिलो पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन के बनाए फ्रेश सॉफ्ट ए ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो दी अवां के रेडिएंट लुक रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी स्किन जे लाए परफेक्ट हाने थियो खूबसूरत थियन वधिक आसान वाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर डी बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर लाए वाइट एज ब्यूटी क्रीम सा गड इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
4: अम्मा हेडो सो मके छा मिलियो
5: पुत्र

0: कदी इन छोकरे जूं जासूसी माराईंदी असां खे
1: पता लगाता हूं इसमें क्या राज है जासूस जासूस
2: असाया पानी साफ ना है तेंजे करी तो सब बीमार था चाहूं असां के पानी ए सफाई बिनन जो ख्याल रखन गुरजे
0: केदो सियाणो पुटरा मुंजो
2: बाबा इयो ही जासूस तांगे बचाइंदो
0: हां
3: साफ पानी महफूज जिंदगी दस्तन खां बचा ही पैगाम कश फाउंडेशन ए कैनेडियन गवर्नमेंट जी तरफा पेश
4: क्या देख रहे हो ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार साथ ही मोटरसाइकिल्स स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं तो भाई साहब क्या समझे
5: बैंक अलबीब रिश्ता भरोसे का
6: आशिक होंडा शोरूम मेहरा पर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल पर एतमाद आई मा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरा पर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ति जिलाई आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120
7: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वदन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट आई फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर आई सूमर ते सुबह 10 खां शाम 5 वगे ताई मरीजन जो इलाज कंदा आहिन हर जुमे छंछर आई आचर ते बगैर फीस जे चेकअप कयो विंदो याद रखंदा मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पोंदी माहिर अमराज नक कन गलो पुरानो नजलो निचो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो सूर घट बुधण में अचन शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वदन जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस BC गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन आई औरतुन में वजन जो न वधण उनन सबनी बीमारन जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लए 0301-2196-851

0: जी लिसनर्स, प्रोग्राम लीगल कॉर्नर में बाबर शेख आहे असां गॾु ऐं मूंसां गॾु स्टूडियोस में मौजूदु आहिनि एडवोकेट शहबाज़ हफ़ीज़ साहब. ऐं अॼु जो असांजो टॉपिक आहे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. तमामु दिलचस्प टॉपिक आहे. अव्हांजो जेको आहे त फीडबैक जेको मिले पियो उन मां इहो ज़ाहिरु थी पियो त तव्हां तमामु घणा हिन टॉपिक ते इंट्रस्टिड आहियो. त असां सां गॾु रहिजो. अञा असां वटि 20 मिंट आहिनि ऐं असां 6 वॻे ताईं हिन प्रोग्राम में कनेक्ट आहियूं. सुठी नॉलेज अव्हांखे मिलंदी, स्पेशली एडवोकेट शहबाज़ हफ़ीज़ साहिबु जेका तव्हांखे नॉलेज ॾींदो न ॾाढी सुठी हूंदी. ऐं जेके असांखे ॿुधंदा जेके अनॼाणे में ॼाणी वाणी न बल्कि बग़ैर ॼाणी वाणी इहे एक्ट उन्हनि खां थियनि पिया त उहे मां सम्झां पियो त उन्हनि खे ख़बर पवंदी त यार हिन जी पनिशमेंट जेका आहे न उहा थी सघे थी.
1: माण्हू असां वटि करे त वेंदा जी हुनखे ख़बर न हूंदी आहे त इंटेंशनली असां कयूं छा था. अनइंटेंशनली कयूं छा था पिया.
0: अच्छा शहबाज़ साहिबु, अचूं पिया हिन जी PPC सेक्शन 407 में हवालो ॾिनो वियो आहे त ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाए कैरियर एंड वेयर हाउस कीपर्स एसेट्रा. कीअं पिया ॾिसो हिनखे, काई शइ कंहिंखे मतिलबु मिले पई कंहिंखे पहुचाइण जे लाइ उन में विच में हू ख़यानत पियो करे, या वेयर हाउस कीपर्स थी विया या बिज़नेसमैन थी विया कंहिंखे अगरि पोयां हैंड ओवर करे वञनि पिया पंहिंजो बिज़नेस ऐं उन में हू ख़यानत करे उन जूं शयूं मिसयूज़ करे, उन ते थोरो
1: मां हिनखे ईअं चवंदुमि. जीअं तव्हां कोई बि कोरियर सर्विस खणो, चाहे उहो गवर्नमेंट हुजे चाहे उहो प्राइवेट हुजे, तव्हां कोई कोरियर सर्विस जे थ्रू तव्हां पंहिंजो क़ीमती सामान मोकिलींदा या ऑनलाइन ज़रिए अगरि तव्हां ऑडर था कयो त उहो ऑनलाइन जे ज़रिए तव्हांजे घर सामान पुॼंदो अचे. सपोज़ तव्हां मोबाइल ऑडर कयो आहे, उहो मोबाइल ऑडर करण जे टाइम जॾहिं तव्हां हिते पुॻो त मोबाइल तव्हांखे डॿो त मिलियो पर मोबाइल न मिलियो, उहो विच में जेको मोबाइल गुम थी वियो, इहो बेसिकली दैट इज़ कॉल्ड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. हिकिड़ो फ़नी मां तव्हांखे ॿुधायां. जीअं सपोज़ हूंदो त न हूंदो त न, जीअं असां वटि हाणे फूड सर्विसिस हले थी पई, सपोज़ कोई फूड सर्विस जे दौरान कोई हिकिड़ो ऑडर थो करे छॾे ऐं ऑडर जे दौरान घर ताईं पुॼंदे पुॼंदे उन में हिकिड़ो ऑडर गुम थो थी वञे, ठीकु आहे, त उहो जेको ऑडर जो गुम थियणु या ऑडर खे ॿी काई जॻह ते डिलीवर करणु, पैसा पूरा वठी छॾणु, उहो जेको उन विच में जेको मिसअप्रोप्रिएशन थिए थी, दैट इज़ कॉल्ड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट.
0: अच्छा इन ते इहो बि अक्सर थींदो आहे शहबाज़ साहब, त स्पेशली असां काई शइ कॾहिं कॾहिं काई बि शइ खाइण वारी घुराईंदा आहियूं त उहो जेको वठी
1: पूरो अवेलेबल
0: खाईंदो ईंदो आहे रस्ते में.
1: एक्ज़ेक्टली, सामान अवेलेबल न हूंदो आहे या उनखे सपोज़ हाणे हिकिड़ी बिरयानी जो पैकेट आहे, अगरि उन में 10 चमचा उन हणी छॾिया त असां हुनखां न पुछंदासीं त छा आहे, पर ॾिठो वञे त उहो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्रिएट करे थो. कोरियर सर्विस से मां सपोज़ कोरियर, हाणे असां कोरियर सर्विस जे थ्रू असां पंहिंजा डॉक्यूमेंट्स मोकिलींदा
0: आहियूं,
1: कपिड़ा मोकिलींदा आहियूं, फर्नीचर्स मोकिलींदा आहियूं, कोई बि अहिड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पर्टिकुलर्स हूंदा असां मोकिले छॾींदा आहियूं, ठीकु आहे, अगरि या शूज़ बि मोकिलींदा आहियूं या असां कपिड़ा, अगरि ड्यूरिंग इन दौरान अगरि उहो शख़्स या उहो इंसान या उहो कोई सर्विस अगर उनके मिसयूज करे पेंजे पर्पज ला इस्तेमाल करे छे थी, फ्रॉम दैट पॉइंट ही इज अ क्रिएटेड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. वेयर हाउसेस में इएं थींदो, सपोज तव्हांजो हाणे हिन साल मूड थो ठहे नारायण ऐं कागान वञण जो, गर्मी बि अचनि थी पियूं ऐं मोस्ट ऑफ द टाइम हर कोई हलियो वेंदो आहे, तव्हां पंहिंजे पाड़े में पंहिंजे लोकेलिटी में गाॾी बीहारींदव,
0: ओके,
1: त हे मुंहिंजी गाॾी खे तव्हां संभालियो, या पंहिंजी मोटरसाइकिल बीहारे वेंदव गाॾी त तव्हां खणी था वञो, या अगरि बाए फैमिली तव्हां वञो त ट्रेन जे थ्रू सफ़र कंदव. हाणे तव्हां कंहिं कंहिं जॻह ते कंहिं गैरेज ते गाॾी बीहारे छॾी, चाबी बि ॾेई छॾी, हाणे उन शख़्स छा कयो, उन गाॾीअ खे मुसलसल टैक्सी करे यूज़ करे छॾियो, उन में तव्हां हुनखे एज़ अ वॉलंटरली हैंड ओवर कई प्रॉपर्टी त मां हिकिड़ी प्रॉपर टाइम ते या हिकिड़े पर्टिकुलर टाइम ते मां ईंदुमि, तव्हां को इहा शइ वठंदुमि, अगरि इन में जेको बि तव्हांजो जेको हूंदी महिनत हूंदी, आई विल पे टू यू एज़ पर द कॉन्ट्रेक्ट, जेको मां तव्हांखे चयो एक्सप्रेसली कॉन्ट्रेक्ट हूंदो आहे या एम्प्लॉइड कॉन्ट्रेक्ट हूंदो आहे, एज़ पर इन कॉन्ट्रेक्ट जे हिसाब सां. पर लेटर ऑन छा कयो, जीअं तव्हां नारायण ऐं कागन जे सफ़र ते निकितो, फ्रॉम नेक्स्ट डे दैट मीन यूज़ दैट योर प्रॉपर्टी एज़ अ टैक्सी, या उनखे कंहिं बि कंहिं सर्विस जे थ्रू हुनखे हलाइणु शुरू करे छॾियो, हुन मां अमाउंट कमाइणु शुरू करे छॾे, तव्हांखे ख़बर ई न, उहो जेको यूज़ेज आहे न फॉर पर्सनल गेन ऐं कंहिंजे पर्सनल लॉस जो, एंड दैट इज़ कॉल्ड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट.
0: ओके, ऐं ईअं अक्सर थींदो आहे तव्हां प्राइवेट मुलाज़िम जेके आहिनि, प्राइवेट जेके आहिनि त कंहिं जॉब वग़ैरह कंदा आहिनि ऐं बिज़नेस वग़ैरह उन्हनि जे जॾहिं हैंड ओवर कनि पिया को सामान,
1: स्टोरेज हूंदा आहिनि, वॾा स्टोरेज हूंदा आहिनि, मिसाल मेडिसिन स्टोरेज हूंदा आहिनि, फर्नीचर स्टोरेज हूंदा आहिनि, मोबाइल स्टोरेज हूंदा आहिनि, कंप्यूटर स्टोरेज. हाणे कंहिंखे को 1000 हिकिड़ा सेल फोन हैंड ओवर करे थो, हाणे 1000 मां अगरि हो ॿ फोन बि खणी थो छॾे, को मायना त नथा रखनि, 1000 फोन मां ॿ फोन बि अगरि खणी थो छॾे हलियो थो वञे, दैट इज सिंगल पॉइंट इज़ कॉल्ड मिसट्रस्ट. उन मिसट्रस्ट खे ई क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट चइबो आहे, छोकी अमानत में ख़यानत थिए थी पई, प्रॉपर्टी वॉलंटरली वञे थी, को भरोसो करे ॾिनो थो वञे त यू आर बींग पेड फॉर दैट थिंग, ऐं पेमेंट वठण खां पोइ बि जेकॾहिं इंसान हुनखे यूज़ करे पंहिंजे पर्सनल गेन जे लाइ देट इज़ कम इन द एम्बिट ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट.
0: ओके, अच्छा, हीअ ब्रेक ते वञण खां पहिरियां पाण खे सवाल
1: आयो,
0: सो उन्हनि सवाल कई त एफ आई आर कीअं कराइजे अगरि इन केस ई थी वञो. उनजे सवाल खां पहिरियां हिकिड़ो सवाल, अगरि इहो थिए पियो, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट थिए पियो, त कीअं आइडेंटिफाई कजे त हीउ सिविल नेचर आहे या हीउ क्रिमिनल नेचर आहे? सिविल कोर्ट में कहिड़ा केसिस वञी सघनि था या एफ आई आर जे लाइ जेके आहिनि?
1: आई गॉट योर पॉइंट, आई गॉट योर पॉइंट. नाउ मूव टू 30 मिनट्स ब्रेक, पोइ ते था वञूं. मां तव्हांखे चयुमि कि सिविल मैटर्स में ऐं क्रिमिनल मैटर में टे शयूं तव्हांखे अमूमन मेन इनग्रीडियंट्स आहिनि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जा. हिकु त प्रॉपर्टी इज़ बींग वॉलंटरली ट्रांसफर्ड, वॉलंटरली असां इंट्रस्टेड कई आहे टू समवन. ॿी इहो ई आहे त एज़ पर कॉन्ट्रेक्ट दैट इज़ कंडक्टेड बिटवीन द टू पार्टीज़ एक्सप्रेसली ऐं एम्प्लाइडली, कि हे तव्हां प्रॉपर्टी रखो ऑन द सर्टन डेट, ऑन सर्टन टाइम, ऑन द रीज़नेबल पंहिंजो जेको आहे न मौक़े ते अची करे, ओकेजन ते अची करे, आई विल टेक दैट प्रॉपर्टी फ्रॉम यू, तव्हां खां मां इहा प्रॉपर्टी वापसि वठंदुमि. अगरि उनमें अगरि को मिसाल तव्हां हुनजे मथां को ख़र्च कयो हूंदो या हुनजी लुक आफ्टर कई हूंदी, आई विल पे यू. ठीकु आहे, पर उहो छा थो करे, उन कॉन्ट्रेक्ट खे ब्रीच थो करे. टी पॉइंट इहो आहे त दैट पर्सन इज़ डिस्पोसिंग ऑफ, डिस्पोसिंग मतिलबु हुनखे इस्तेमालु थो करे, या दैट पर्सन इज़ रिमूविंग, या हुनखे डिस्ट्रॉय थो करे छॾे. सो उन छा थो करे त वॉलन उन शइ खे, उन पूरे जे पूरे कॉन्ट्रेक्ट खे, उन एज़ पर लॉ उनजी वायोलेशन करे थो. त इहे टे इनग्रीडियंट्स लाज़मी आहिनि जेको क्रिएट कंदा कि इहो सिविल नेचर खां हटियल आहे, छोकी प्रॉपर्टी में शुरू में बदनीयती न हूंदी आहे, लेटर ऑन बदनीयती क्रिएट थी वेंदी आहे, त उनखे यूज़ थो करे. हाणे सिविल में छा आहे, सपोज़ कंहिं कंहिंखां पैसा वरिता, उहो पेमेंट त ॾींदो थो अचे, पर ड्यू टू सम लॉस हाणे उहो पेमेंट नथो करे सघे. उन में बदनीयती न आहे, उहो कुझु मसलनि जे करे, हालातनि जे करे उहो तव्हांखे कुझु पेमेंट्स न ॾेई सघियो आहे. हिते छा आहे, हिते इंसान हुन प्रॉपर्टी खे मिसयूज़ थो करे छॾे. ठीकु आहे, इहो डिफरेंस आहे क्रिमिनल.
0: शहबाज़ साहब, हीअं अक्सर थींदो आहे, तव्हां ॾिठा हूंदा पंहिंजी हुन प्रैक्टिस में, त पैसा ॾींदे ई ॾींदे हमरा कंहिं बि ॻाल्हि ते तल कलामी थी वेंदी आहे, चवंदो आहे न ॾींदोमांइ पैसा, जेको करिणो थी वञी कर. पोइ बि सिविल जी तरफ़ ईंदो या
1: सिविल थींदो? उहो स्पेसिफिक में वेंदो तव्हांजो कॉन्ट्रेक्ट आहे न, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रेक्ट तां हलिया वेंदो होॾे, सिविल जी तरफ़ हलिया वेंदो तव्हां. हिते छा आहे, हिते अगरि मां तव्हांखे कुझु एक्स्ट्रा पॉइंट ॿुधायां, जीअं असां बेलमेंट हूंदी आहे न, प्लीज हूंदी आहे, बेलमेंट हूंदी आहे, मॉर्गेज हूंदी आहे. हाणे प्लीज ऐं बेलमेंट जी तरफ़ अगरि मां ईंदुमि, कॉन्सेप्ट्स आहिनि इहे बेकी बेसिकली कॉन्ट्रेक्ट एक्ट जा, त बेलमेंट में छा थींदो आहे त इंसान वॉलंटरली जेको आहे न प्रॉपर्टी खे ट्रांसफर थो करे विदाउट जेको आहे न गिविंग पोज़ेशन, पोज़ेशन न ॾींदो, सॉरी पोज़ेशन ॾींदो, एंटाइटलमेंट न ॾींदो, मालकी न ॾींदो, मालकी माण्हू वटि ई रहंदी, पोज़ेशन ॾेई छॾंदो. हाणे उहो चवंदो त मां तव्हां को सर्टन टाइम ते अची करे इहा शइ वापसि वठंदो, उहो हुनजो लुक आफ्टर कंदो. इन जो हिकिड़ो सवलो मिसाल ॾियां, तव्हां कंहिं माण्हू खे चओ त साईं हे मुंहिंजो 5 किलो जो जेको चांवरनि जो बोरो आहे तव्हां रखो हिते, ऐं इहो फाइन बहितरीन क़िस्म जो हे चांवर आहे, ऐं हाणे तव्हां रखाए हलिया वियो, चई मां तव्हांखे सुभाणे इहो खणी वेंदुमि. हाणे माण्हुनि छा कयो त ॾिठो हे चांवर तमामु सुठो, उन मां 1 किलो चांवर खणी करे विकिणे छॾी, ऐं पंहिंजो लो क्वालिटी जो जेको चांवर आहे मिलाए छॾी. उनखे मिसयूज़ आहे न, जेको हुन चांवरनि खे मिसयूज़ करे छॾियो, उन चांवरनि खे पंहिंजे पर्पज़ लाइ तो गेन कयईं, विकतई, उन मां हुनखे पैसा मिलिया, वरी पंहिंजो लो क्वालिटी जो चांवर तव्हां सां मिलाए छॾियईं. उहो जेको मिलाइण जेको जेको जेको फेज़ आहे न, उन फेज़ खे असां चवंदा आहियूं क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट.
0: ऑल राइट, अक्सर त कोई अगरि ॿुधाए वञे चांवर सुठी क्वालिटी वारो हमरा त पचाइण शुरू थी वेंदो,
1: थींदो आहे कॾहिं कॾहिं थींदो आहे, या त ॾिसो न, या त
0: हुनजी
1: रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे न, हुनजी रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे टू लुक आफ्टर हिम. असल मां तव्हांखे छा चयुमि, बेल बेलमेंट जेके चवंदा अमानत तौरु रखाइण, प्लीज बि असां छा चवंदा अमानत तौरु रखाराईंदा
0: आहियूं.
1: प्लीज में छा थींदो आहे त सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु असां को लोन वठंदा आहियूं कंहिं पर्पज़ जे लाइ, त जॾहिं मां लोन तव्हांखे वापसि करे छॾंदुमि, तव्हां इहा प्रॉपर्टी काइंडली मूंखे हैंड ओवर कंदो.
0: So,
1: इनखे चइबो आहे अमानत में शुरू में बदनीयती. मां वन सेकेंड रिपीट थो कयां, आई एम रिपीटिंग दैट पॉइंट नॉट बिकॉज ऑफ द लिसनर, नॉट बिकॉज द दोस पर्सन हू आर लुकिंग अस या वॉचिंग अस, बट फॉर द दोस पर्सन जेके असांखे विच में बि अगरि असांखे कंहिं ज्वाइन कयो आहे, त हुनखे इहा ख़बर पइजी वेंदी वाट काइंड ऑफ टॉपिक इज़ बींग डिस्कस बिटवीन द बाबर एंड सर शहबाज़.
0: तैयब जो सवाल ते अचूं पिया,
1: हाणे मां तैयब जिन सवाल ते ईंदुमि, इट डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी. मिसाल सपोर 400 जे अगरि तव्हां डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन प्रॉपर्टी में वेंदो, हुनजी पनिशमेंट 2 साल आहे, ईअं अगरि तव्हां 400 हुन में 403 में ईंदो हुनजी पनिशमेंट 3 साल आहे. ईअं तव्हां अगरि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में हुनजी बि 3 साल
0: आहे.
1: डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी एंड इन द कंडीशन दैट क्राइम इज़ बींग डन.
0: तो
1: डिपेंड करे थो लाज़मे 2 सालनि खां वठी करे वेंदे 10 साल ऐं प्लस लाइफ इम्प्रिज़मेंट ताईं बि हिनजी सज़ा आहे. पर अमूमन छा आहे 10 साल. इहो मैजिस्ट्रेट ट्रायल बि आहे, इहो सेशन ट्रायल बि आहे.
0: ठीकु आहे. अच्छा, हिकु ॿ ॿिया बि असां वटि वॉइस नोट्स आहिनि जेके मां इंक्लूड कयां पियो.
1: जी जी.
2: अस्सलाम वालेकुम सर, माय नेम इज़ ज़ुबैर अहमद. मैं आपका प्रोग्राम देख रहा था तो इसी मुतलक मेरा एक सवाल है कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और चीटिंग में क्या फर्क होता है, आम लोग इसको कैसे समझ सकते हैं, इसका जवाब दें प्लीज.
1: वेरी गुड क्वेश्चन,
0: सवाल किया. अच्छा सवाल किया है ज़ुबैर आपने.
1: जी, थैंक यू वेरी मच ज़ुबैर. इट्स अ वेरी ग्रेट क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड बाय यू. चीटिंग इज काइंड ऑफ डिसेप्शन, इज काइंड ऑफ कंसीलमेंट ऑफ द फैक्ट्स फॉर एनीथिंग. अगर ईअं सम्झो त ठगी करणु, जंहिंखे धोखो ॾियणु, काई कंहिं माण्हू खे यकीन ॾियारण, डिस माना एतिरो इंड्यूस करे छॾण त जेकी इहा शइ आहे इहा वाकई मुंहिंजी आहे, मूंखां तूं ख़रीद कर, जॾहिं त उहा शइ हुनजी नाहे. मिस्ट्रस जो मां तव्हांखे इहो ॿुधायां, डिसेप्शन चीटिंग ऐं मिसअप्रोप्रिएशन जो इहो आहे त सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु वंस अगेन कमिंग टू द सेम पॉइंट के बदनीयती फ्रॉम द बिगनिंग आहे. चीटिंग में जेकी डिसऑनेस्टी आहे उहो शुरू खां
0: ओके,
1: ही इज़ इंटेंशन टू डिसीव दैट पर्सन, माना बाद में क्रिएट न थियो आहे. जेको मैंसरी आहे, जेको एक्सरी आहे, जेको मैंसरी आहे, इंटेंशन जेके असां चऊं था, जेको मैंसरी आहे उहो स्टार्टिंग में ई क्रिएटेड आहे.
0: यस यस,
1: ठीकु आहे न. लेटर ऑन माण्हू छा थो करे त एक्सरी आहे त हुन सां गॾु आहे, पर जेको मिसअप्रोप्रिएशन में जेकी थिए थी उहा मैंसरी आहे तव्हांजो, जेके असां चवंदो बदनीयती, उहा शुरू में न आहे, उहा लेटर ऑन क्रिएट थी थिए. मूंखे अगरि हिकिड़ो मोबाइल थो मिले रोड ते, मां खणी छॾियो, माना आई हैवन्ट फाउंड द रियल ओनर, मूंखे न आहे ख़बर, पर मां हुनजी पब्लिकेशन बि करायां थो, मां पाड़े में अनाउंसमेंट बि करायां थो, मां लोकेलिटी में न्यूज़ बि फैलाए थो छॾां, अगरि मुंहिंजो सर्किल आहे मां हुते व्हाट्सअप ते मैसेज बि हलायां थो, मां फेसबुक ते हिकिड़ी वीडियो बि चाढ़े थो छॾां त हे मोबाइल कंहिंजो आहे, अगरि जेको बि रियल ओनर हुजे अचे मूंखां वठे,
0: वठी वञे,
1: ठीकु आहे. हाणे मुंहिंजी लुक आफ्टर कंदुमि, केयर कंदुमि, पर मोबाइल मूंखे मिलियो, मूंखे ख़बर आहे मोबाइल बाबर जो आहे, पर स्टिल आई एम नॉट गिविंग that thing to the barber. Natho diyama, I know where is the barber live, what is the location of the barber, in where place, in which place the barber is working,
0: sahi
1: unji service ka tha, but still that thing I'm using for my own purpose, that thing is called misappropriation. Intention baad mein create to the
0: sahi wa misappropriation,
1: cheating mein shuru mein tahan jo intention hi dhoko dena.
0: All right,
1: theek hai na. That's a difference between cheating and misappropriation.
0: Sir, ekro bio sawal bhi asan wati aayo hai program mein shamil kyon pya.
3: Assalamualaikum sir, ये दा तमाम यो प्रोग्राम बदी रहा आयो. असन को ननडो सवाल हो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के हिसाब सा, अगर कोई भी मानु जको सो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करे थो पयो, दायरा कानून के मुताबिक उन के का सजा भी देनी वंदी, थोड़े इन बारे में असन के गाइड कजो था जको सो उन जी केतरी सजा आहे, ए असन उन के केड़े तरीके सा सजा दे रहे सकू था.
1: अस्सलाम
0: जी.
1: बहुत क्वेश्चन आ सेम तैयब भी सागो क्वेश्चन
0: वन सेकंड. अच्छा सजा ज्यादा अफजल क्यों पे एकड़ो बियो क्यों. अच्छा कने प्रोग्राम जो वक्त भी पुडियाणी ते पहुंचण वारो है, देन असा कंक्लूड क्यों पे टॉपिक
1: विद यू. माय डोंट विद यू टाइम गुजरी एंदो खबर ही ना पड़ी.
2: वालेकुम सर, आई एम मोहम्मद. तांडो प्रोग्राम बुधी रहया से जे त तांडो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के हिसाब से टॉपिक हले पियो, उनमें एकड़ो मुझे सवाल हुयो त पाकिस्तान पेनल कोड में क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की सजा छाए, यो बुधाय जो थोड़ो
1: तकरीबन सजा चंदा पया. त असन जे या सोसाइटी में आम जाम शिया नॉर्मल शिया या यू माना एज यूजुअल बेसिस से थे थी पई. सो कोशिश यो करन दा अगर कोई उनन सा धोखेबाजी करे तो
0: सजा दियाने
1: या उन जी अमानत में कहन उन के सजा के दियारी. सो बेहतर इहो आहे त सज़ा ॾियण खां बहितर
0: आहे अचणु घुरिजे त हे माण्हू धोखेबाज़ी घटि कंदा,
1: छो की ॾिसो न असां लफ़्ज़ लिखंदा आहियूं स्टेट वर्सिस डेट पर्सन या ए बी सी पर्सन. अगरि कोई माण्हू क्राइम थो करे न त उहो इंडिविजुअल सां क्राइम नथो करे, उहो पूरी सोसाइटी सां क्राइम थो करे. त देट इज़ द रीज़न जॾहिं बि असां क्रिमिनल केसिस में लिखंदा आहियूं स्टेट वर्सिस ए बी सी माना हिन शख्स हिकु इंसान सां क्राइम न कयो आहे पूरी रियासत सां क्राइम कयो आहे छोकी रियासत इज़ अ मदर छोकी स्टेट हूंदी आहे मदर हूंदी
0: आहे
1: जो रोल मदर वारो हूंदो आहे कि टू प्रोटेक्ट टू फीड एंड टू गिव शेल्डर टू इट्स इंडिजन जेके रह जेके माण्हू आहिनि जेकी हुनजी पब्लिक आहे जेकी हुनजी आवाम आहे उन्हनि खे जेको आहे न इहे टई शयूं मुहैया कनि स्टेट जो कमु
0: आहे
1: सो इहे इंडिविजुअल सां क्राइम न हूंदो आहे पूरी स्टेट
0: सां क्राइम हूंदो आहे सो एक कॉलर शामिल था करे वठूं देन असा प्रोग्राम भी कंक्लूड कयूं पिया था कंट लाइव कॉलर
1: जेके मोस्ट फेमस एंड लाइकेबल सेक्शन
0: सो लेट्स सी लाइन के गदे के रहन अस्सलाम वालेकुम
4: बाबर वालेकुम सलाम फिलहाल साहब खुश है
0: जी जी अल्हम्दुलिल्लाह सवाल केड़ो पूछण चाहिंदो दादा
4: अगा मां सवाल यो कंदम अग में भी ता सवाल कयो से तकरीबन अध सौ सवाल अमल थी चुको आ वरी भी अर्ज कंदा से
0: जी
4: हा त जेको तव्हांखे मां चयो अॻे हफ़्ते त माना ड्रग्स ऐं आइस भंग वग़ैरह एम्पायर नाके रोड रोड ते हले थी
0: ठीकु आहे
4: त हिन ते गवर्नमेंट सिंध पुलिस असांजी ॾाढो हिते मां ॾिसां थो कमकार एॾी तेज़ीअ सां थी करे जे मवाली या मंशात वारा दर पदर करे छॾिया अथऊं ॾाढो बहितर था कनि
0: असांजी
4: दिलि ख़ुशि थी थिए
0: तव्हां ईअं ई पॉइंट आउट कराईंदा रहंदा कयो इनशाला ताला कारवाई थींदी मंशात फरोश जेके बि आहिनि इन्हनि खे बसि सज़ा मिलंदी ठीकु आहे
4: सरकार मां त माना पकड़ायान बि पर हिते छो अहिड़ो या एस पी मां सां हुजे न मां क्राइम वारा अहिड़ा माण्हू पकड़ायानि जेके सॼी ज़िंदगी गवर्नमेंट न पकड़े सघी आहे इलाही माण्हू मूं वटि आहिनि जेके मां ॾिसां थो उन्हनि जा अखाणा ॾिसां थो मूंखे जे माना को तंग न करनि त मां गवर्नमेंट सां वॾी हेल्प कयां
1: बेसिकली ही माना वर्किंग एज़ अ सुपर हीरो अगर कोई पंहिंजी सुसाइड ॾिसो आसमान मो खिलाई मकलू हर टाइम सुपरमैन त न ईंदो जेके असां इमेजिनरी हिकिड़ी दुनिया ठाही आहे आयरन मैन सुपरमैन मार्वल
0: सीरीज़
1: जेके असां जेके माण्हू हूं जेके अगरि पंहिंजी सोसाइटी में अगरि काई बि शइ खे पॉइंट आउट कयूं था कयूं था पिया अगरि काई बि अहिड़ी क्रिमिनल एक्टिविटी खे रेस्ट्रिक्ट कयूं था बेसिकली वी आर डूइंग द वर्क ऑफ सुपर हीरो चाहे उहो नंढे बेसिस ते कयूं चाहे वॾे बेसिस ते कयूं
0: वक़्तु मुख़्तसर आहे शहबाज़ साहब लास्ट कॉलर पाण शामिल था कयूं
4: साईं
0: जी जी अलहमदुलिल्लाह दा
4: साईं जी सलाम
0: वालेकुम अस्सलाम
4: साईं मां पप्पू काके थो ॻाल्हायां खपे करे कोड़े मो
0: जी अदा पप्पू
4: असां कोड़े में सया मनसा करे बंक कैप सु दी आदा सुपारी पर अदा खरा को रहा
0: अन्या हले पई
4: हां ने
0: चलो अवां के भाई मौके बिल्कुल अवां के मौके दियो पया ता थोड़ो इलाके जो पॉइंट आउट करायो केड़ो एरिया है किथे पई खुलियाम हले मनसात पुलिस वारा आहिनि जेके त इन्हनि एरिया खे पॉइंट आउट कयो आहे उते वञी करे भराए महिरबानी मनशाद अगरि हले पई त उन्हनि खे हथी ॾियो उन्हनि खे वञी करे जेको आहे त
1: कुझु पॉइंट हिते एड कंदुमि
0: पकिड़े जो
1: जी बिल्कुलु टूरिस्ट जीअं हाणे अदे वारनि हिकिड़ो ज़िक्र कयो त पुलिस वारनि हुते वॾो बहितरीन रोल प्ले
0: कयो
1: मां आई हेड्स ऑफ देम माना मां सल्यूट पेश कंदुमि सलाम पेश कंदुमि इन्हनि पुलिस वारनि खे जेके इन एक्टिविटीज़ खे रोकनि था ऐं पंहिंजी जाननि जी क़ुर्बानी बि ॾियनि था ऐं पंहिंजी जाननि खे जेको आहे न रिस्क ते रखी करे ऐं इन्हनि एक्टिविटीज़ खे जेको आहे न बंदि कराइनि था सो मां जीअं अॻुणे चयुमि त सुपर हीरोज़ मथो न ईंदा
0: आहिनि सुपर
1: हीरोज़ असांजे अंदरि ई
0: हूंदा
1: अगरि इहे पुलिस वारा अगरि पंहिंजी डे नाइट पंहिंजी पब्लिक जे करे अगरि पंहिंजी लाइफ खे रिस्क ते खणी हलनि था फॉर मी दे आर आयरन मैन फॉर मी दे आर सुपरमैन फॉर मी दे आर द बैटमैन सो मार्वल ऐं डी सी खे ॾिसणु न खपे असांजे अंदरि ई सुपर हीरोज़ अवेलेबल आहिनि वॾी तमामु इहा अप्रिशिएबल ॻाल्हि आहे मां अप्रिशिएट कंदुमि हुन पुलिस वारनि खे जेके इन्हनि जॻहियुनि ते वञी करे ऐं असांखे प्रोटेक्ट करनि था ऐं जेको आहे न इन पूरे जो पूरे जेको आहे न सोसाइटी खे क्लीन रखनि था पिया इन्हनि आसिर्स खां
0: बिल्कुल शहबाज साहब प्रोग्राम जो पुराणी ते पहुतो आ इलाही शयूं पंहिंजियूं रहिजी वयूं आहिनि अञा
1: वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह
0: सो लास्ट में कीअं अव्हां असांजे जेका व्यूअर्स खे पैगाम ॾींदा त जीअं उहो जेका इहा आहे ब्रीच ऑफ ट्रस्ट आहे ऐं मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी आहे इन खां बची सघनि
1: मां हिकिड़ो इहो ई चवंदुमि त दे डू डिस्टिंग्विश बिटवीन
0: ओके
1: अगरि तव्हां खां प्रॉपर्टी ॾियो था पिया त कोशिशि कयो त हुनजे हुनजा आई विटनेसिस ज़रूरु हुजनि
0: ऑल राइट
1: ठीकु आहे ऐं आख़िर में इहे चवंदुमि त अगरि सपोज़ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट थियो आहे त पहिरियों ई तव्हां पंहिंजे कंसर्न एस एच ओ खे पुलिस खे पंहिंजी इंफॉर्मेशन ॾियो एस पी कंप्लेंट सेल ते ॾियो उन्हनि जे ख़िलाफ़ु तव्हां अगरि तव्हां वटि रसीदूं आहिनि अगरि तव्हां वटि एविडेंस आहे तव्हां वटि वीडियो आहे तव्हां वटि मैसेजिस आहिनि तव्हां वटि व्हाट्सअप कॉल्स आहिनि अगरि तव्हां को घुरे त तव्हां पहिरियों त तव्हां एंटाइटलमेंट ॾेखायो मालिक ई ॾेखायो इहा शइ तव्हांजी आहे उन खां पोइ तव्हां हिननि जे लाइ ईज़ीली एफ आई आर दाख़िल करे सघो था पिया त मुंहिंजो मैसेज इहो ई हूंदो त अगरि कोई बि कंहिं बि शइ माण्हू खे तव्हां अमानत ॾियो त कोशिशि कयो त तव्हां उनखे जेको आहे न हैंड ओवर करण जे टाइम वॉल हैंड ओवर करण जे टाइम कैटेगोरिकली ॿुधायो त मां तव्हांखे अमानत तौर थो ॾियां काइंडली yes. ख़यानत न कजो
0: अच्छा हिन ते मुख़्तसिरी इहा ॻाल्हि मुंहिंजे ज़हन में अचे पई अक्सर मूं ॾिठो आहे मुंहिंजे साम्हूं सोसाइटी में अहिड़ा माण्हू आहिनि जिन खे अगरि अमाउंट मनी वग़ैरह असां हुननि खे अमानत लाइ रखिया आहियूं पिया न त हू चवंदा आहिनि हीअ ब्लेसिंग ऑफ डिसगाइज़ थी वियो आहे असां हिन अमाउंट खे यूज़ कंदासीं पोइ आहिस्ते आहिस्ते किस्तनि में मोटाए ॾींदासीं हुननि खे त इहो त असां चऊं न त हू बाक़ाइदा तौर ते ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कनि पिया अमानत में ख़यानत करे रहिया आहिनि ऐं स्पेशली जेको ट्रस्ट करे तव्हां वटि कुझु रखाए पियो जी
1: ॾिसो न भई तव्हां पाण ई लफ़्ज़ ॿुधायो सवाल जो जवाब बि तव्हां पाण ॾिनो त अमानत तौर रखा
0: अमानत तौर
1: हाणे अगरि हुन मां हिन रुपियो बि अगरि ज़ाया करे छॾियो रुपियो बि अगरि पंहिंजे मथां इस्तेमालु करे छॾियो त उहो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में ई वञे
0: ओके
1: ठीकु आहे न बाबर
0: त लिसन्स बिल्कुलु प्रोग्राम जे वक़्त बि पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो शहबाज़ हफ़ीज़ साहब जेको आहे असांखे सुठी नॉलेज ॾिनी आहे अबाउट द टॉपिक ऐं तव्हांजी महिरबानी शहबाज़
1: सुठो लॻो आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम टू बी रिटर्न इन द सेम प्लेस विद यू
0: अच्छा तव्हां शुरू में चयो त तव्हां जेको आहे इहो जेको ॿ टे प्रोग्राम्स में तव्हां न अचे उन जो तव्हां रीज़न
1: मुंहिंजो रीज़न बाबर इहो त आई वॉज़ बिज़ी इन माई कॉम्पिटेटिव एग्ज़ामिनेशन अलहमदुल्ला मां क्वालिफाई कयां so I was once again I am going to appear in interviews
0: inshallah
1: kuch examination bhi abhi hain plus college ja kuch lectures ja plus me assignments wagera hain jin de kare ma ta ke time nahi sakyum but mukhe khushi a ta ta je je panel advocates han je sir amjad sahab achi ho ke bhi aindar asan ja panel advocates hain un me ma in ke big shout out dinum ta wo bhi tamam sutho ta sa gad cooperate karan
0: ta ai
1: je ko ta jo vision a legal corner jo un ke carry on kare akte khani halan ta pya
0: मुंहिंजो
1: त ख़्वाहिश इहा ई आहे की आई शुड नॉट बी ओनली द वन हेयर तव्हां सां गॾु पूरी टीम हुजे पैनल जी कंहिंखे हर वीकेंड ते अची करे तव्हां कंहिं पंहिंजे आवाम खे जेके बि आहिनि उहो डिफरेंट क़िस्म जी लीगल नॉलेज प्रोवाइड करनि ऐं सोल्यूशन्स ॾेई सघनि हुननि खे
0: ऑल राइट सो व्यूअर्स तव्हांजी महिरबानी तव्हां प्रोग्राम में शामिल थिया सभई ऐं कंहिंजा अगरि फीडबैक्स रहिजी विया हुजनि हुननि खां मां माज़रत खां टॉपिक सां रेलिवेंट तव्हां इहा ई
1: पंतालीह मिंट जे प्रोग्राम में पंटीह मिंट प्रोग्राम में कोशिशि कंदा आहियूं पूरे समट खे हिकिड़े कूज़े में जेको आहे न समाए सघूं पर अगरि होपफुल अगरि कोई सवाल रहिजी हुजे अगरि कोई कॉन्सेप्ट सम्झ में न आयो हुजे नेक्स्ट टाइम तव्हां असांखे व्हाट्सअप करे सघो था तव्हां कॉल करे फीडबैक ॾेई असां हुनखे रेक्टिफाई
0: कंदासीं
1: असां बि इंसान हूं असां को बि ख़तमु थी सघनि थियूं अगरि असां को अगरि एक्सप्लेनेशन करण में को ख़तमु थियो ख़ता थी हुजे का मिस्टेक तव्हां काइंडली असांखे रेक्टिफाई करे सघो था असां हुनखे इहो एरर डिटेक्ट करे असां हुनखे रेक्टिफाई कंदासीं इनशाला
0: सो असांजो फीडबैक जे लाइ नंबर आहे 0300113488 सो अगले प्रोग्राम ताईं ॾींदा इजाज़त अलाह हाफ़िज़
1: थैंक यू वेरी मच

0: सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: तेहरान अमरीकी तजवीज़ ते गौर करे रहियो आहे, नतीजे ते पहुतासीं त ऐलान करे छॾींदासीं। ईरानी फौज समूरन सलाहियतुनि सां मुकमल तौर ते तयार आहे, सूरत हाल ते बि नज़र रखियल आहे। ईरान अञा बि केतिरा ई महीना अमरीकी नाकाबंदी बर्दाश्त करे सघे थो। अमरीकी गुझे इदारे CIA ट्रंप इंतज़ामिया खे आगाह करे छॾियो। आलमी नशरियाती इदारे मूजिब CIA पंहिंजी नई रिपोर्ट में ॼाणायो आहे त तेहरान वधीक 4 महीननि ताईं अमरीकी नाकाबंदी बर्दाश्त करे सघे थो, जंहिं सबबि ईरान अमरीका जो दबाव घणे हद ताईं क़बूल न करे रहियो आहे। तेहरान जी ॻाल्हियुनि में सुस्तीअ जो सबबि बि इहो ई आहे। वज़ीर आज़म शाहबाज़ शरीफ हलंदड़ महीने चीन जो दौरो कंदो। सदर शी जिनपिंग ऐं वज़ीर आज़म ली चियांग सां मुलाक़ात कंदो। ज़रियनि मूजिबि वज़ीर आज़म शाहबाज़ शरीफ 23 खां 25 मई ताईं 3 ॾींहनि जे सरकारी दौरे ते चीन वेंदो। पाक चीन लाॻापन खे 75 साल मुकमल थियण ते थींदड़ तक़रीबुनि में शिरकत बि कंदो। वज़ीर आज़म जे दौरे दौरान पाकिस्तान ऐं चीन विच में मुख़्तलिफ़ मुआहिदनि ते सहियूं बि थींदियूं। CPEC ऐं वापारी लाॻापन खे वधीक हथी ॾियण ते बि ग़ौर वीचार कयो वेंदो।

IMF सरकारी इदारनि जी निजकारी ऐं सुधारनि वारो अमल तेज़ करण जो मुतालबो करे छॾियो। बिजली, गैस ऐं पेट्रोल जूं क़ीमतूं लाॻत तहत रखण जो मुतालबो। IMF जो विच ओभर में जंग बावजूद पाकिस्तान पारां मुआशी हदफ़ हासिल करण जो एतराफ़। हलंदड़ साल पाकिस्तान जी तरक़ीअ जी शरह 3.6% ताईं रहण जो इम्कान ज़ाहिर। IMF जी एग्ज़ीक्यूटिव बोर्ड रही सघे थी। टैक्स नेट खे वधाइण वारनि कोशिशुनि में बि तेज़ी आणण जी ज़रूरत आहे। भारत ख़िलाफ़ जंग में कामयाबी पाकिस्तान खे दुनिया में नई सुञाणप ॾिनी आहे। अमेरिका ईरान जंग में किरदार अदा करण जो बि वॾो सबबु भारत ख़िलाफ़ जंग में कामयाबी आहे। लाहौर में तक़रीब खे ख़िताब कंदे वफ़ाक़ी वज़ीर अहसन इक़बाल चयो आहे त दुश्मन खे हक़ वारी जंग में शिकस्त ॾिनी, हाणे तरक़ीअ वारी जंग में कामयाबी माणणी आहे। तरक़ीअ वारी जंग न खटी त हक़ वारी जंग में मिलियल कामयाबी बि घणी देरि बरक़रार रखी न सघंदासीं। इस्तेहकाम लाइ मज़बूत मैशत ज़रूरी आहे।

0: हक वारी जंग में कामयाबी के साल मुकम्मल थियण ते सिंध के मुख्तलिफ़ शहरों में रैलियूं। कराची में डॉक्टर्स की NICH का जना अस्पताल ते रैली। पाक फौज के भेटा पेश। टंडो मोहम्मद खान में पुलिस जवानन पारा जंग में कामयाबी के साल मुकम्मल थियण ते रैली कढ़ी वही। पनियाकिल में भी पाक फौज की हिमायत में रैली। खैरपुर में भी मेडिकल कॉलेज का सिविल अस्पताल की रैली कढ़ी वही। लाड़काने में तालीम खाते पारा जंग में कामयाबी की खुशी में रैली कढ़ी वही। पीर जो गोठ में भी मुख्तलिफ़ स्कूल के उस्तादन शागिर्दान शागिर्दियाणियों पारा रैलियों कढ़ी वयूं। भारत के बर्तनाक शिकस्त दियण ते पाक फौज के भेटा पेश। फौज समूरन सलाहियतों से मुकम्मल तौर से तैयार है। सूरत हाल से भी नजर रखल है। ईरान अञा भी केतरा ही महीना अमरीकी नाकाबंदी बर्दाश्त करे सके तो। अमरीकी गुझे इदारे CIA ट्रंप इंतजामिया के आगाह करे छो। आलमी नशरियाती इदारे मूजिब CIA पंजी नई रिपोर्ट में जानायो आहे त तेहरान वधीक चइन महीनन ताईं अमरीकी नाकाबंदी बर्दाश्त करे सके तो, जंहिं सबब ईरान अमरीका जो दबाव घणे हद ताईं कबूल न करे रहियो आहे। तेहरान जी ॻाल्हि में सुस्तीअ जो सबब बि इहो ई आहे। वज़ीर आज़म शाहबाज़ शरीफ हलंदड़ महीने चीन जो दौरो कंदो। सदर शी जिनपिंग ऐं वज़ीर आज़म ली चियांग सां मुलाकात कंदो। ज़रियनि मूजिब वज़ीर आज़म शाहबाज़ शरीफ 23 खां 25 मई ताईं 3 ॾींहनि जे सरकारी दौरे ते चीन वेंदो। पाक चीन लाॻापन खे 75 साल मुकमल थियण ते थींदड़ तक़रीबुनि में शिरकत बि कंदो। वज़ीर आज़म जे दौरे दौरान पाकिस्तान ऐं चीन विच में मुख़्तलिफ़ मुआहिदनि ते सहियूं बि थींदियूं। CPEC ऐं वापारी लाॻापन खे वधीक हथी ॾियण ते बि गौर।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: हेलो वर्णा, खबर ना है मैं हर वक्त तेरी थकेला थकेला शो हूँ दिया है।
3: तू खाइंदी इच्छा है स्कूल में बाकी बारन जी मंझन जी मानी डिठिया है।

0: जॾहिं ॿिए ॿार जे सोचण जो वक़्तु अचे त ॿ साल तूं सोचजांइ, बसि इहा ॻाल्हि कमु ईंदी।
1: जॾहिं नई माउ बणजण जो डपु हुजे त कंहिं पुराणीअ जी ॻाल्हि ॿुधो। हमल जे दौरान रत जी घटिताई खे बि नज़रअंदाज़ न करियो। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो।
2: छा अव्हां जो चेहरो बेजान ऐं डल लॻे थो? हाणे वक़्त आहे चमकण जो। हेमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम सां कुदरती जुज़न सां तयार कयल, जेका ॾे कुदरती निखार, साफ़, नरम ऐं रोशन चेहरो। पहिरें ई इस्तेमाल में फ़र्क़ु

महसूस करो है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम तहां भी चमकायो पहजो चेहरो जीए होजे हीरो है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम चेहरे जी असल चमक जो राज। आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चुपर एतमाद आईमा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी है। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई 0307 3592120।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: धीअ जे जनाज़े लाइ घोटकी वेंदड़ पीउ क़त्ल, संदसि भाउ ज़ख़्मी थियो आहे। बक्सूल बंसूर धीउ जे फौतकी वारे इतलाउ ते नंढे भाउ सां गॾु घोटकी वञी रहियो त वाकियो पेश आयो। शुरूआती जांच में वाकियो फुर्म अज़म जो लॻी रहियो आहे। वधीक जांच कई पई वञे।
2: संगीन थी वियो। आबादगार सख़्त परेशान।

0: सर्विस कमीशन में पंहिंजा नवाज़ी ऐं मेरिट जी रिटायर नामंज़ूर। मुतासिर उम्मीदवारनि जी तहरीक तेज़ थी वई। गॾियल चटाभेटी इम्तिहान में शिरकत कंदड़ उमीदवारनि जो लाॻीतो बेॾी हैदराबाद में एहतजाज। मुतासिर उम्मीदवारनि गुज़िरियल ॾींहनि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जी ऑफिस साम्हूं धरणो हयो, अॼु ॿिए ॾींहुं बि एहतजाज कयो वियो। मुतासिर उमीदवारनि जो चवणु आहे त 2024 जी गॾियल चटाभेटी इम्तिहान में मेरिट जी रिटायर कई वई। ॻाल्हि फेल थियण जी न पर सिंध जे मुस्तक़बिल जी आहे। नतीजनि जी ॿीहर जांच कराई वञे। मेरिट ऐं हक़नि जे तहफ़ुज़ लाइ जिदोजहद जारी रहंदी। मुतालबा तस्लीम न थिया त एहतजाज जो दायरो वधाईंदासीं। पंहिंजनि हक़नि ख़ातिर अदालत जो दर बि खड़काईंदासीं।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: हाण नरम चमक ऐं साफ़ जिल्द रुगो हिक क्रीम जी दूरी ते। पेश आहे हेमे नेचुरल्स जी डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम, जंहिंमें शामिल आहे SPF 30, सिज जे नुक़सानकार किरणनि खां बचा लाइ कोजिक एसिड ऐं जिल्द मां दाग धप्पा निशानात ख़तम करण लाइ विटामिन सी, ग्लूटाथायोन ऐं आर्बुटिन, जेके ॾियनि तव्हां जे चेहरे खे कुदरती साफ़ ऐं चमकदार ग्लो। रोज़ानो इस्तेमाल करियो हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम ऐं हासिल करियो नओ ग्लो नओ एतमाद। हर ॾींहुं हुजे हिकु नओ ग्लो हिकु नओ कॉन्फिडेंस। हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम। हाण नरम चमक ऐं साफ़ जिल्द रुगो हिक क्रीम जी दूरी ते। पेश आहे हेमे नेचुरल्स जी डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम, जंहिंमें शामिल आहे SPF 30, सिज जे नुक़सानकार किरणनि खां बचा लाइ कोजिक एसिड ऐं जिल्द मां दाग धप्पा निशानात ख़तम करण लाइ विटामिन सी, ग्लूटाथायोन ऐं आर्बुटिन, जेके ॾियनि तव्हां जे चेहरे खे कुदरती साफ़ ऐं चमकदार ग्लो। रोज़ानो इस्तेमाल करियो हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम ऐं हासिल करियो नओ ग्लो नओ एतमाद। हर ॾींहुं हुजे हिकु नओ ग्लो हिकु नओ कॉन्फिडेंस। हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम।

नर्म और बेदाग जेल एक क्रीम की दूरी पर। हेमी नेचुरल्स के पिंक डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम, इसमें शामिल है SPF 30 जो सूरज के नुकसानदेह श्वाओं से तहफ्फुज़ दे, कोजिक एसिड जो जिल्द से दाग धब्बे खत्म करे, और विटामिन सी, ग्लूटाथायोन और आर्बोटिन।

जी हाँ दोस्तों, या तमाम के म्यूजिक सुनाने बुधाई प्रोग्राम में शामिल छेड़ने का तरीकेकार अवां के ऑलरेडी खबर आए तो प्रोग्राम की शुरुआत में तमाम प्यारे प्यारे गानों अवां सभी जिले प्ले कर छो है गानों बुध एंजॉय कर मूसा गड रहो हेमे ब्यूटी शो में पूरे

0: पाण नरम चमक ऐं साफ जिल्द रुगो हिक क्रीम जी दूरी ते पेश आहे हेमे नेचुरल्स जी डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम जंहिं में शामिल आहे एसपीएफ 30 सिज जे नुक़सानकार किरणनि खां बचा लाइ कोजिक एसिड ऐं जिल्द मां दाग धब्बा निशानात ख़तम करण लाइ विटामिन सी ग्लूटाथायोन ऐं आर्बुटिन जेके ॾियनि तव्हां जे चेहरे खे कुदरती साफ़ ऐं चमकदार ग्लो रोज़ानो इस्तेमाल करियो हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम ऐं हासिल करियो नओ ग्लो नओ एतमाद हर ॾींहुं हुजे हिकु नओ ग्लो हिकु नओ कॉन्फिडेंस हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम
1: जी दोस्तों हेमे ब्यूटी शो में शमन मीरारी की आवाज में तमाम प्यारो गानो अमा बुधियो उम्मीद आई तवा के पसंद आयो हुंदो सो लेट्स सी अगते तवा जले अन्या मावटे तमाम प्यारा प्यारा गाना थव मजो थी वेंदव इन थदी थदी मुंद में बाकायदा तौर से थदड़ी थदड़ी हवा हली रही है उम्मीद है मच बारी कर इन जहाँ तमाम घणी एहतियात कन्दा हों इन मुंद जहा ठीक है सो अवे खबर है दोस्तों प्रोग्राम में सेगमेंट है सॉन्ग सुण एक भेर बीहर म्यूजिक प्ले क्या पे तुम या सुणे बुधाई तो कड़े गाने की म्यूजिक है ठीक है बुध सभी और सा

0: जी दोस्तों बिल्कुल तांगिया मोगे सुनाने बुधाइंदो केड़े गाने जी म्यूजिक का प्रोग्राम में शामिल थे तरीके कार मावा के ऑलरेडी बुधाए चुको आया सो कुछ वॉइस नोट्स हैं ते हां बाद ने 8881 वारा मैसेजेस ठीक है बुधो खौर सा
1: वारा बाबर बाला पाकमाचे एफएम एटीएटी दी टीम से सदाई खुश है आबाद रखे अवां जो शो है में शो तमाम बेहतरीन है बेस्ट चली रहा है आऊं है आपके पले चाचर लाड़कण खा बाबर बा मुझे फरमाइश है मास्त मंदूर मुझे दोस्त बदे तो वास्त पले बुट्टी विक्या सांगी हां चाचू अशरफ पले लिखे मुझे तरफ सलाम
0: चलो वालेकुम अस्सलाम अदा अज फरमाइशी फॉर्मेट कौन है इन लाइ फरमाइश करने का पासो कयो ठीक है सो तमाजी मेहरबानी प्रोग्राम में शामिल थे एकड़ो बियो वॉइस नोट
2: अस्सलाम वालेकुम बाबर बा चाहला खुशायो ठरी मीरवा खेरपुर मिरस का सिंगर शायर सजाद अली चनो तवा सा मुखातिब है तवा जो प्रोग्राम लाजवाब है में नेचुरल ब्यूटी क्रीम असा पान इस्तेमाल के प्यार दोस्तन के बुधाई प्या असने कुछ दोस्तन तवा जो प्रोग्राम बुधंदा नारे खान गुलाम अली चनो साहब
0: चलो अदा तांजी मेहरबानी प्रोग्राम में शामिल थे चले सो एकड़ो ही वॉइस नोट अचो वो दुख छा पे चवन
3: बाबर भा मां गुलाम रसूल मरी मीरपुर खास काठड़ी का तो गालाया हेमी बीटी क्रीम जबरदस्त क्रीम आ चेहरे के सोनो प्यारो ए खूबसूरत बनाए तो मो पेरे बडबी होरती पर 15 दिन मके न मिलियो हो पर पो भी चेहरे में सागी रौनक हुई 15 दिन में भी चेहरे में सागी रौनक हुई उन सूमर के ढी डबू टे डबू बी वो अच्छा उ मोट प्यून जबरदस्त क्रीम आ मू मुह के चेहरे के सुनो बनाए तो हथन के भी सुनो बनाए तो जो मू हथन के लगे हथ भी तमाम सुणा थी वा मुझे दोस्त आन मुझे प्यारो दोस्त बेवफा इम्तियाज अली बंगलानी राणो ग्रोही उन मुझे प्यारो दोस्त बिलावल सोलंगी बिलावल अवां जो प्रोग्राम बुधे पियो आई ब्या जेके प्यारा दोस्त मुझा भायर प्रोग्राम बुधन पिया सभी के मुझे तरफा खोड़ सरा सलाम दुआओं कबूल पौन खास करे परवेज बंगलानी जायद बंगलानी के मुझा सलाम दुआओं
0: वालेकुम अस्सलाम भा तांजी मेहरबानी प्रोग्राम में शामिल थिया अदा सो एकड़ो ही वॉइस नोट उदो ही छापे चवन
4: अस्सलाम वालेकुम बाबर भा गोठ वली मुंदरंद का शराज अली बंगलानी गला रहे हैं हेमे नेचर डैम में किलो बेहतरीन आसा लगा रहे हैं तवांडे सेल्फी मुकलिया दांग दबा मेड़ा खत्म करे थी बेहतरीन जो रिजल्ट असंजा कुछ दोस्तन काठड़ी का गुलाम रसूल मरी विलेज वानब शाम यूसी विक्या सांगी डिस्ट्रिक्ट लाड़काने का अशरफ अली मिराली तनवीर अली मिराली इम्तियाज अली बंगलानी के सलाम हुजन बिलाव मोहम्मद बिलावल बंगलानी के सलाम हुजन अस्सलाम वालेकुम या अली मदद
0: वालेकुम अस्सलाम मौला अली मदद तो दोस्तों बिल्कुल हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम वारन जो पैगाम भी जो है वक्तन फवक्तन अवां ताईं पहुचाईंदुसि इन जो हिकिड़ो इहो बि फ़ाइदो आहे त सियारे जी मुंद में अक्सर जेको आहे स्किन ड्राई थी वेंदी आहे ऐं इन ड्राई स्किन जे करे तव्हां तमामु घणा परेशान थींदा आहियो ऐं तमामु घणियूं क्रीम्स लॻाईंदा आहियो पर तव्हांखे अगरि नेचुरल ग्लो मिली वञे नेचुरल ड्राइनेस या ख़तमु थी वञे त केॾो न अमेज़िंग थींदो बिल्कुल ये मुमकिन हेमे नेचुरल्स वारन दावा कई आ इन प्रोडक्ट जरिए हम इस्तेमाल कयो था पेंजी रूटीन लाइफ में शामिल कर छोड़ो था तो तवा इन मौसम के बदलन जी असरात पवन था स्किन ते उनन खां तवा महफूज रही सको था जी हाँ हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम अवारी शहर की शाही बाजार में तवा आसानी से मिली सके थी एकड़ो ही वॉइस नोट पोए 8881 वारा मैसेजेस
5: अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद अला हुसैन रोरी मोकिलाए तो बाबा भाई छाल खुश है बखेर जी तवाज प्रोग्राम दादो बेहतरीन हों अस में ब्यूटी क्रीम अस आंदा तकरीबन हफ्तो खन तमाम बेहतरीन रिजल्ट वाकई में ब्यूटी क्रीम ढी भली है ब्यूटी भी कहंदी सन के असा साथी बुद्धा पारे में इलाही शुक्रिया
0: शुक्रिया अदा तव्हांजी महिरबानी ना प्रोग्राम में शामिल थिया सो सलाम अदा में प्यारी आर जे सिदरा की दोस्त इरम हूं और आपके घर में मंगनी उन्हनि भी तव्हांजे घर में शादी मां तव्हांजे लाइ उन्हनि भी सहरो हलायो अलाए तव्हां ॿुधियो अलाए कोन सो आई विल ट्राई फॉर प्लेइंग द सेहरा ऑफ मुमताज़ मोलाई जेको तव्हां फरमाइश कई आहे तव्हांजी महिरबानी सो ए एच ममनून सर सभु कुझु सलाम वालेकुम असलाम ममनून भाई ॻोठ शादी खां जिस्कानी लग मीरपुर खास का गुलाब अली जिस्कानी मोहम्मद हाशिम जिस्कानी एंड शमन अली लाशारी बाबर भा हेमे ब्यूटी क्रीम मीरपुर खास में किथे

फिरमाइश करण खां पासो कंदा ठीक आ त दोस्तों बिल्कुल प्रोग्राम में सेगमेंट आए सॉन्ग सुनियाण मा म्यूजिक प्ले के आमा पे एक बेरो बीयर तवा सुनियाण बुधायो त या केड़े गाने जी म्यूजिक आ सब बुदो गौर सा आई सुनियाणो त बाबा ही केड़े गाने जी म्यूजिक आ छु बला दे त अनिया ते के भी न सुनियाती आ ने म्यूजिक के

हाण नरम चमक ऐं साफ जिल्द रुगो हिक क्रीम जी दूरी ते पेश आहे हेमे नेचुरल्स जी डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम जंहिं में शामिल आहे एसपीएफ 30 सिज जे नुक़सानकार किरणनि खां बचा लाइ कोजिक एसिड ऐं जिल्द मां दाग धप्पा निशानात ख़तम करण लाइ विटामिन सी ग्लूटाथायोन ऐं आर्बुटिन जेके ॾियनि तव्हां जे चेहरे खे कुदरती साफ ऐं चमकदार ग्लो रोज़ानो इस्तेमाल करियो हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम ऐं हासिल करियो नओ ग्लो नओ एतमाद हर ॾींहुं हुजे हिकु नओ ग्लो हिकु नओ कॉन्फिडेंस हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम

0: हाण नरम चमक ऐं साफ जिल्द रुगो हिक क्रीम जी दूरी ते पेश आहे हेमे नेचुरल्स जी डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम जंहिं में शामिल आहे एसपीएफ 30 सिज जे नुक़सानकार किरणनि खां बचाउ लाइ कोजिक एसिड ऐं जिल्द मां दाग धब्बा निशानात ख़तम करण लाइ विटामिन सी ग्लूटाथायोन ऐं आर्बुटिन जेके ॾियनि तव्हां जे चेहरे खे कुदरती साफ़ ऐं चमकदार ग्लो रोज़ानो इस्तेमाल करियो हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम ऐं हासिल करियो नओ ग्लो नओ एतमाद हर ॾींहुं हुजे हिकु नओ ग्लो हिकु नओ कॉन्फिडेंस हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम
1: अॼु दोस्तो बिल्कुलु ज़बरदस्त गानो तव्हां ॿुधियो उमेद आहे तव्हांखे पसंदि आयो हूंदो सो हिन खां अलावा हींअर मां लाइव कॉल्स तव्हांजी इंक्लूड कंदुसि ऐं 888 वारा मैसेजिस एज़ वेल एज़ ठीकु आहे विलेज मोहम्मद इब्राहिम संदीलो मोहम्मद हारून संदीलो अब्दुल हमीद संदीलो फ्रॉम मोरो खां गोट होत खां लुंड खां सादिक अली लुंड मज़र बलोच अदा बाबर शेख गौराख में बर्फ़ पई आहे हेमे ब्यूटी क्रीम हा चलो ठीक आदा तव्हांजी महिरबानी बलोच साहब शामिल थियण जे लाइ बाबर भाई आपका शो बहितरीन है मोहम्मद जुम्मन ख़ासि करे फ्रॉम मीर खान लगारी सकरण खां भली खार सकरण वारो अच्छा ही घणे वारो मैसेज आहे ओके ही ए एच ममनून सर कल वाली मैच में सलमान अली आगा की बैटिंग का क्या हुआ था भाई आई डोंट नो आई नॉट इंटरेस्टिंग इन क्रिकेट मैच आपका बहुत शुक्रिया सो इसके अलावा सर बाबर प्रोग्राम जबरदस्त तमाम बेहतरीन कंपेयरिंग फ्रॉम हालानी कुर्बान अली डेपर मोहम्मद आचर डेपर अहमद खान डेपर सावन खान हालेपुर टू डेडिकेशन एन एन जी अब्दुल जब्बार सना ओके अदा सो अच्छा ही तैयार बाबारो मैसेज आया ओके यार वही गाल है अ तीन कें म्यूजिक न सुनिया थी या तो कड़े गाने की म्यूजिक आ प्ले क्या पे गौर से बुधो और लाइव कॉल जरिए अची कर मुझे बुधा कड़े गाने की म्यूजिक आ ठीक है बुधो गौर से

0: ठीकु आहे दोस्तों, हींअर मां लाइव कॉलर जी तरफ़ हलंदुसि ऐं ॾिसूं था लाइन ते कहिड़े कहिड़ा आहिनि। हाणे नो वॉइस नोट्स, ठीकु आहे, फर्दर मां वॉइस नोट्स शामिल न कंदुसि, जस्ट लाइव कॉल्स। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम
0: साईं, केरु था ॻाल्हायो?
1: शहज़ादो
0: सोरेड़ो साहब, छा हाल आहे, ख़ुशि आहियो? अलाह जो शुक्र आहे। शहज़ादो साहब, म्यूज़िक प्ले कई आहे, कहिड़े गाने जी आहे? अबोल मारे छॾियो, कहिड़ो ज़िलो आहे तव्हांजो?
1: ज़िलो घोड़की खानपुर बार खां।
0: अच्छा, परे आहे अञा, ठीकु आहे, चलो ठीकु आहे, मां गानो थो तव्हांखे ॿुधायांव, ठीकु
1: आहे?
0: ओके सोरोड़ो साहब, तव्हांजी महिरबानी, ऐं प्रोग्राम में शामिल थिया। अच्छा, जिन वटि नशियात घटि अचे पई त उहे फेसबुक ते बि ॿुधी सघनि था, GAFM असांजो पेज आहे, उते लाइव मां अचां पियो। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम।
0: अदा, केरु था ॻाल्हायो?
2: जी,
0: केरु था ॻाल्हायो भाउ?
2: इस्माइल जट थो ॻाल्हायां, शिकारपुर खां।
0: इस्माइल, छा हाल
2: आहे?
0: अलाह जो शुक्र आहे, सी थिए ई थो इस्माइल? हा
2: हलो
0: इस्माइल, आवाज़ नथो अचे मुंहिंजो,
2: घटि त ॼाणी अचे।
0: अच्छा ॿुधाए, कहिड़ो म्यूज़िक आहे, कहिड़े गाने जो आहे, कहिड़ो गानो आहे, भला ॿोल कहिड़ा आहिनि? हल ठीकु आहे, महिरबानी अदा इस्माइल।
2: ओके
0: त इस्माइल वटि मूंखे लॻे पियो सी ॾाढो हुयो त ध्यानु सीए खां बचण जे पासे में वियो। बहरहाल का ॻाल्हि कोन्हे अदा इस्माइल, ॾाढी ख़ुशी थी तव्हां मूंखे जॉइन कयो। सो हिकिड़ो ॿियो कॉलर शामिल कयूं पिया, ॾिसूं था लाइन ते करे केरु आहिनि। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम यार, मुंहिंजो आवाज़ अची वियो पियो? सही थो हुजे फोन ते आवाज़?
2: जी
0: सफ़ा VIP। नालो ॿुधायो। इम्तियाज़, हा छा हाल आहे इम्तियाज़ भाउ? अॼु फर्स्ट टाइम पाण फोन ते पिया ॻाल्हायूं, ईअं न? चलो अॼु तव्हांजी कॉल लॻी आहे, कीअं पियो लॻे प्रोग्राम ऐं हेमे ब्यूटी क्रीम जो छा रिज़ल्ट आयो मां वटि? चलो गुड आहे साईं, तव्हांजी महिरबानी। अच्छा मां म्यूज़िक प्ले कई आहे, बंगलाणी साहब कहिड़े गाने जी आहे? यार ॾाढी सवली आहे, बहरहाल ॿुधायो त तव्हांजे लाइ जेको आहे मां जेको आहे। अच्छा कहिड़ो पैगाम ॾियणु चाहींदव असांजे सामान खे या दोस्तनि खे सलाम ॾियणु चाहींदव?
2: हींअर सर्दी जे मौसम आहे, गर्मी घटि आहे, चेहरे खे लॻाईंदा, चहिरो VIP थींदो, इहो मुंहिंजो रिक्वेस्ट आहे, गुज़ारिश कई आहे सभिनी खे, मां तव्हां वञी वठो मुंहिंजा कुझु दोस्तनि खे।
0: जी शामिल कयो
2: काठड़ी खां तव्हां गुलाम रखंदो मरी विलेश वादी शाह यूसुफ असांखे गिफ्ट खण खां नंढो तबीर अली मिरानी मुंहिंजो दोस्त अशरफ मिरानी खे सलाम हुजनि नंढो दिलावर अली बिलावल अली
0: चलो वालेकुम असलाम अदा तव्हांजी वॾी महिरबानी प्रोग्राम में शामिल थियण जे लाइ। त दोस्तो बिल्कुलु असांजा तमामु घणा प्यारा लिसनर्स आहिनि जेके प्रोग्राम में जॉइन कंदा आहिनि, मूंखे ॾाढी ख़ुशी थींदी आहे ऐं इन्हनि जी तरफ़ां जेको फीडबैक हूंदो आहे न, ऐं हेमे ब्यूटी क्रीम इस्तेमालु कंदड़ आहिनि त जेको फीडबैक ॾींदा आहिनि न, मुंहिंजी ख़्वाहिश आहे इहा नंढड़ी त इहो तव्हां जेको आहे न फीडबैक मां तव्हां फ़ाइदो वधि खां वधि हासिल कयो, ठीकु आहे? सो लेट सी नेक्स्ट कॉलर केरु आहिनि। अस्सलाम वालेकुम। अदा, केरु था ॻाल्हायो
2: भाउ?
0: लाशारी साहब, नालो ॿीहर ॿुधायो। शमन अमन,
2: अमन
0: ठीकु आहे। अदा इहो ॿुधायो त जेका म्यूज़िक प्ले कई आहे कहिड़े गाने जी
2: आहे?
0: छा आहिनि इहो न साईं? ज़ामिन अली कोन्हे, हलो का ॻाल्हि कोन्हे मां जेको आहे त हींअर जेको आख़िर में प्ले कंदुमि मां ॿुधजो ऐं अॼु जेको आहे तक़रीबन कंहिं बि सही जवाबु न ॾिनो आहे स्टिल ऐं मां ॾिसां पियो त केरु सही जवाबु ॾिए पियो या न सो का ॻाल्हि कोन्हे अगरि तव्हां सही जवाबु न बि ॾियो पिया सो मां हींअर जेको आहे त लाइव कॉल जी तरफ़ हलंदुसि ऐं ॾिसूं था लाइन ते घर केरु मौजूदु आहिनि अस्सलामु अलैकुम
2: पिताफी
0: साहब छा हाल आहे ख़ैर आमीन अदा आमीन पिताफी साहब म्यूज़िक प्ले कयो आहे कहिड़े गाने जो आहे सफ़ा समुझ में नथी अचे भला हेमे ब्यूटी क्रीम समुझ में आई
2: आहे
0: पकमे हेमे ॿियो कुझु त न आहे हेमे हेमे
2: आहे
0: ठीकु आहे महिरबानी साईं शामिल थिया तव्हां जी जी शामिल करे वठो
2: अब्दुल लतीफ़ असांजो
0: चलो महिरबानी अदा त दोस्तो अञा ताईं कंहिं बि सही जवाबु न ॾिनो आहे सो मूंखे लॻे थो मां इहो गानो प्ले कंदुसि तव्हांजे लाइ पोइ तव्हां चवंदो यार इहो गानो असांखे अचे पियो ॾिठो असां न करे सघियासीं असां शामिल न थी सघियासीं असां जमान असां न ॿुधाए सघियासीं इट्स ओके अच्छा हिकिड़ो ई वॉइस नोट मुंहिंजी दिलि न पई अचे त मां हिनखे जेको आहे इग्नोर कयां छाकाणि त हिन हेमे ब्यूटी क्रीम जी सेल्फी बि मोकिली आहे छा पिया चवनि ॿुधो
3: इस्तेमालु कयूं था ॾाढी ज़बरदस्त क्रीम आहे ऐं ॾाढो वी आई पी रिज़ल्ट अथसि ऐं असांजो चाचो बि यूज़ कंदो आहे मुंहिंजो मल्होत्रा उहो बि यूज़ कंदो आहे मोहम्मद अली मंदूर अहमद
0: इस्तेमालु कंदड़ आहिनि उन्हनि जो छा चवणो त दोस्तो हिकु दफ़ा ॿीहर मां तव्हांखे हिननि जो पैगाम ॿुधायूं वञा त हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम वारनि दावा कई आहे त हेमे ब्यूटी क्रीम में SPF 30 वाइटमिन सी ग्लूटाथायोन कॉजिक एसिड ऐं ॿिया केतिरा ई इनग्रीडियंट शामिल आहिनि जेके तव्हांजे चेहरे जी स्किन खे बिल्कुलु परफेक्ट नरम मुलायम तरो ताज़ा रखनि पिया त तव्हां हिन जो फ़ाइदो हासिल करे सघो था विद इन 7 days तव्हांखे हिन जो रिज़ल्ट मिली सघे थो जेकॾहिं अव्हांजे शहर में न मिले त तव्हां हिन जे हेल्पलाइन नंबर ते कॉल करण में बिल्कुल बि कंजूसी न कयो धड़ाधड़ कॉल्स कयो त जीअं तव्हांजे शहर में ई इलाइक़े में ॻोठ में वेझे स्टोर ते अवेलेबल कराइनि सो नंबर्स आहिनि 0336713540 ऐं ॿियो नंबर आहे 0313362 65 त म्यूज़िक हुयो जेको उहो मां प्ले कयो आहे ऐं इहो गानो जेको आहे हुन जा ॿोल आहिनि अच्छा सिंगर आहे इहो इकरार वहीद अली ऐं ॿोल आहिनि जे रोज़ रसंदे त मेणा मिलंदा है ॿुधो इंजॉय कयो ऐं अॻे प्रोग्राम ताईं पंहिंजे मेज़बान बाबर शेख खे ॾियो इजाज़त सदाई गॾु अलाह हाफ़िज़ ऐं ज़िंदगी बख़ैर

0: हाँ नरम चमक साफ जिल्द रुगो एक क्रीम की दूरी ते पेश आहे हेमे नेचुरल्स की डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम जिनमें शामिल आहे एसपीएफ 30 सिज के नुकसानकार किरणन का बचा लाए कोजिक एसिड जिल्द मां दाग धब्बा निशानात खत्म कर लाए विटामिन सी ग्लूटाथायोन आरबुटीन जेके डियन तवाजे चेहरे के कुदरती साफ चमकदार ग्लो रोजानो इस्तेमाल करियो हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम हासिल करियो नो ग्लो नो एतमाद हर डी हुजे एक नो ग्लो एक नो कॉन्फिडेंस हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम।
1: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।
2: सागो ही खेमचंद सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में ये उन जैसा सा रिजल्ट खणी आया हूं खेमचंद जी वो खेमचंद इते फेल है मुझे ये पीरा वायरल भी थयो खेमचंद। अच्छा खेमचंद अकेलो कोने को अलग केतरा खेमचंद है जेके सीएसएस पास करन था एपीसीएस में फेल था थियो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ते दिसो था थोड़ा एड़ा मानू पास छन था जिन जो ताल्लुक के ताकत भरी कोटन से तो निकरे छे। मिसाल तौर ते मुझे हथ में एकड़ी तस्वीर आ ता दिसि सको था अगूनो मेंबर जो हो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जो उनको पुट रहे दफे सी सी 2024 में पास अस यो समझूं था रिजल्ट मैनिपुलेट कई वही
3: इलेक्शन पास हो रिजल्ट कई वही

0: 11,000 महीननि में जेके 70 पास कया आहिनि उन्हनि खे तव्हां खणी ॾिसंदव त उन्हनि खे पॉलिटिकल एफिलिएशन मिलंदी, उहे मेंबर्स या पुट तव्हांखे मिलंदा, जेके डिज़र्विंग हींअर ब्यूरोक्रेट्स आहिनि उन्हनि जा पुट मिलंदा, तव्हांखे को बि ग़रीब ॿार उन में न मिलंदो। 11,000 वेठा त हिनखे सिर्फ़ 70 मिलिया, जेका शइ साबित थी करे त ही बदनवानी आहे, करप्शन आहे।
1: सर, उन्हनि मां मेजोरिटी में कैंडिडेट्स उहे आहिनि जेके कंहिं न कंहिं पॉलिटिकल एफिलिएशन सां तालुक आहे, या कंहिं को ब्यूरोक्रेट जो पुट आहे, को कंहिं एस पी जो पुट आहे, रिटायर्ड एस पी जो पुट आहे, ऐं तक़रीबन मेजोरिटी में जेके साउथ कराची मां कैंडिडेट्स बिलोंग था
2: कनि। उन 70 नौजवाननि मां बि उहे सिफारिशी, उहे ऑफिसरनि जा ॿार, उहे मेंबरनि जा पुट भाणे जा पास कया आहिनि, घणे अंग में जंहिंखे नौकरियूं तोहफ़नि में ॾिनियूं वयूं आहिनि, ऐं सिंध जो सरमायो आहिनि, उन सां हर आवाज़ उनजे आवाज़ में गॾु वेहंदासीं।
3: सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में पंहिंजा नवाज़ी ऐं मेरिट जी लताड़ नामंसूर मुतासिर उमेदवारनि जी तहरीक तेज़ थी वई। गॾियल चटाभेटी इम्तिहान में शिरकत कंदड़ उमेदवारनि जो लाॻीतो ॿिए ॾींहं बि हैदराबाद में एहतजाज। मुतासिर उमेदवारनि गुज़िरियल ॾींहं सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जी आफ़िस साम्हूं धरणो हयो हो, अॼु ॿिए ॾींहं बि एहतजाज कयो वियो। मुतासिर उमेदवारनि जो चवणु आहे त 2024 जी गॾियल चटाभेटी इम्तिहान में मेरिट जी लताड़ कई वई, ॻाल्हि फेल थियण जी न पर सिंध जे मुस्तक़बिल जी आहे, नतीजनि जी ॿीहर जांच कराई वञे, मेरिट ऐं हक़नि जी तहफ़ुज़ लाइ जदोजहद जारी रहंदी, मुतालबा तस्लीम न थिया त एहतजाज जो दायरो वधाईंदासीं, पंहिंजनि हक़नि ख़ातिर अदालत जो दर बि खड़काईंदासीं।
4: अमेरिका ईरान में ईंदड़ हफ़्ते इस्लामाबाद में ॿीहर ॻाल्हियूं शुरू थियण जा इम्कान। मामला टे न थियण ते सदर ट्रम्प जी वरी ईरान खे ऑपरेशन फ्रीडम प्लस शुरू करण जी धमकी। अमरीकी अख़बार वॉल स्ट्रीट जर्नल रिपोर्ट में चयो वियो आहे त अमरीका ऐं ईरान सालिसी कंदड़ धुरियन सां गॾिजी शुरूआती वाइदे ते कम करे रहिया आहिनि, जंहिं तहत हिकु महीने ताईं ॻाल्हियुनि लाइ फ्रेमवर्क ते कयो वेंदो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प अॼु ईरान तरफ़ां अमरीकी तजवीज़नि ते जवाब मिलण लाइ पुरउमीद। डोनाल्ड ट्रम्प चयो आहे त ईरान सां मामला टे न थिया त ॿीहर प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस तरफ़ वञी सघूं था। प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस में ॿियूं शयूं बि शामिल हूंदियूं।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: छा अहाजो चेहरो बेजान आई डल लगे थो, हाणे वक्त आहे चमकण जो। है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम सा कुदरती जुजन सा तैयार कयल, जेका दे कुदरती निखार, साफ नरम आई रोशन चेहरो। पहिरें ही इस्तेमाल में फर्क महसूस करियो। है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम तहां भी चमकायो पंहिंजो चेहरो, जीअं हुजे हीरो। है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम, चेहरे जी असल चमक जो राज।
2: खुशखबरी खुशखबरी, हाणे अवां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी, वारन ऐं नहन, एलर्जी, कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस: रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहराबपुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0385 569 0385 69।
3: माशाला फौजी पाई फैक्ट्री, नर्स गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेहरापुर। असां वटि जॻहि जूं ॾियारियूं, जॻहि जा पावा ऐं पाइप, ॾेढ ॿ चार छह नव ऐं 12 इंच में प्लेन ऐं कॉलम में मौजूद आहिनि। फौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793। खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप, कोटड़ी कबीर रोड, मेहराबपुर, कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर। डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण MA DHMS सिंध, RHMP इस्लामाबाद, होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन, सीनियर लेक्चरर, नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, नवाबशाह। हर अरबा, खमीस, जुमे, छंछर, आचर ऐं

0: मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी माहिरे अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
2: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारियत दस्तियाब आहिनि
1: हाणे ई अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी
2: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372
3: खुशखबरी खुशखबरी हाणे अवां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असुर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहराबपुर वधीक राब्ते जे लाइ 0385-569
4: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहराबपुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहराबपुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बहितर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहराबपुर राब्ते जे लाइ 0320-1800-003

0: It's 8:30 PM. This time check is brought to you by
1: Hame Diamond Glow Bleach Cream, जो deep clean करे और दे चार गुना brightness, चमक ऐसी diamond skin जैसी. Hame Diamond Glow Bleach Cream.
2: अब आपकी खूबसूरती का fan, White Age Beauty Cream.

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
3: सरिया गार्डन टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बार दस्तियाब आहिन।
2: हाने यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
3: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 02424601000।
4: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, आरपीएम जी एडजस्टमेंट,

0: कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राबते जे लाए 03-20-18-00-003
1: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ए सोम

गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभिनी बीमारियुन जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाइ 0301 91 896

सिंध में पानी की शदीद खोट दौरान पंजाब तकरारी लिंक कैनाल खोले छड़ा। पंजाब तकरारी सीजी लिंक कैनाल जरिए 5000 क्यूसिक एनटीपी लिंक कैनाल जरिए 7470 क्यूसिक पानी खड़न लगो। इरसा में सिंध के नुमाइंदे मामले ते खामोशी अख्तियार करे वरती। जरियन मूजिब तकरारी कैनाल खोलन

0: ताए पंजाब हुकूमत इरसा का इजाजत बिनाहे वरती पंजाब पारा बिना इतला जे तकरारी कैनाल्स मां पानी खड़न बाद सिंध में पानी बोरान संगीन थी वयो आबादगार सख परेशान
1: अमेरिका ईरान में इंदड़ हफ्ते इस्लामाबाद में बीह गाल शुरू थियण जा इम्कान मामलाते न थे सदर ट्रंप की वरी ईरान के ऑपरेशन फ्रीडम प्लस शुरू करण की धमकी अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल रिपोर्ट में चयो है अमरीका ईरान साजिशी कदड़ धुरियन से गड़ी शुरूआती मुहिदे से कम कर रहा है जै तहत एक महीने ताई गालियन लाए फ्रेमवर्क तय किया वेंदो अमरीकी सदर डोनल्ड ट्रंप भी अज ईरान तरफा अमरीकी तजवीजन से जवाब मिलने लाए पुरउमीद डोनल्ड ट्रंप है ईरान से मामला तय न थिया तो बीहर प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस तरफ वही सकूं था प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस में बी शूं भी शामिल होंद
0: पैंजो कम कर रहा आयो कहीं डेडलाइन से को भी ध्यान ना है ईरानी परदेही वजारत के तर्जमान इस्माइल बकाई है तेहरान अमरीकी तजवीजन से गौर कर रहा है नतीजे ते पहुंतासीं ऐलान करे छॾींदासीं ईरानी फौज समूरन सलाहियतुनि सां मुकमल तौर ते तैयार आहे सूरत हाल ते बि नज़र रखियल आहे
1: ईरान अया भी केतरा ही महीना अमरीकी नाकाबंदी बर्दाश्त कर सके तो अमरीकी गुज इदारे सीआईए ट्रंप इंसामिया के आगाह कर आलमी नशियाती इदारे मूजिब सीआईए पैंजी नई रिपोर्ट में जानायो है तेहरान चैन महीने ताई अमरीकी नाकाबंदी बर्दाश्त कर सके तो जै सबबी ईरान अमरीका जो दबाव घणी हद ताई कबूल न कर रो है तेहरान की गालियन में सुस्ती जो सबब भी इो ही है

पाकिस्तान अमन पसंद रियासत है पर हर जारियत जो भरपूर जवाब दियण भी जानू था। सदर आसिफ जरदारी पारा हक की जंग में कामयाबी जो एक साल मुकम्मल थे पाक फौज के भेटा पेश। सदर आसिफ जरदारी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क्यादत के हक की जंग में कामयाब ए मरकजी किरदार करार दिनों। पाक फिजाया के सरबराह एयर चीफ मार्शल जहीर अमन बाबर सिद्धू ए जवान की महारत की विवाह खान। सदर आसिफ जरदारी चयो तो पाक बेरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ ए पाक नेवी के जवानों से भी फख्र है। गैर कानूनी तौर भारत के कब्जे हेठ वालारियल कश्मीर जो मसलो ठहरान मुताबिक हल थे घुर्जे। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की इखलाकी सफारती हिमायत जारी रखंदो।

हक वारी जंग में कामयाबी के साल मुकम्मल थियण से सिंध के मुख्तलिफ शहर में रैलियों। कराची में डॉक्टर्स की NICH का जना अस्पताल से रैली। पाक फौज के भेटा पेश। टंडो मोहम्मद खान में पुलिस के जवानों पारा जंग में कामयाबी के साल मुकम्मल थियण से रैली कढ़ी वही। पनियाकिल में भी पाक फौज की हिमायत में रैली। खैरपुर में मेडिकल कॉलेज का सिविल अस्पताल की रैली कढ़ी वही। लाड़काने में तालीम खाते पारा जंग में रैली कढ़ी वही। पीर जो गोठ में भी मुख्तलिफ स्कूल के उस्तादन शागिर्दन पारा रैली कढ़ी वही। भारत के बर्फ नाक शिकस्त पाक फौज के भेटा पेश।

0: अखबारी जंग में कामयाबी के साल मुकम्मल थियण ते सिंधी जेलनि में बि तकरीबूं। सेंट्रल जेल सखर में अखबारी जंग में कामयाबी के साल मुकम्मल थियण ते तकरीब। जेल अमले ऐं कैदियुनि जी शिरकत। खैरपुर जी डिस्ट्रिक्ट जेल में बि भारत खे शिकस्त ॾियण ते पाक फौज खे भेटा पेश करण लाइ तकरीब थी। हैदराबाद जी सेंट्रल जेल में बि अखबारी जंग में कामयाबी ते तकरीब। इंतज़ामिया ऐं कैदियुनि जी शिरकत। मदीर जेल में बि अखबारी जंग में कामयाबी खे साल मुकम्मल थियण ते तकरीब। पाक फौज खे भेटा पेश।
1: वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हलंदड़ महीने चीन जो दौरो कंदो। सदर शी जिनपिंग ऐं वज़ीर आज़म ली चियांग सां मुलाकात कंदो। ज़रियुनि मूजिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 23-25 मई ताईं 3 ॾींहनि जे दौरे ते चीन वेंदो। पाक चीन लाॻापनि खे 75 साल मुकमल थियण ते थींदड़ तक़रीबनि में शिरकत बि कंदो। वज़ीर आज़म जे दौरे दौरान पाक ऐं चीन विच में मुख़्तलिफ़ मुआहिदनि ते बि सहियूं कयूं वेंदियूं। सी पैक ऐं वापारी लाॻापनि खे वधीक हथी ॾियण ते बि ॻाल्हियूं कयूं वेंदियूं।
0: IMF सरकारी इदारनि जी निजकारी ऐं सुधारनि वारो अमल तेज़ करण जो मुतालबो करे छॾियो। बिजली, गैस ऐं पेट्रोल जूं क़ीमतूं लाॻत तहत रखण जो मुतालबो। IMF जो विच ओभर में जंग बावजूद पाकिस्तान पारां माशी हदफ़ हासिल करण जो बि एतराफ़। हलंदड़ साल पाकिस्तान जी तरक़ी जी शरह 3.5-6% ताईं रहण जो इम्कान आहे। IMF जे एग्ज़ीक्यूटिव बोर्ड पाकिस्तान जे माशी प्रोग्राम लाइ 3 जाइज़े जी मंज़ूरी ॾेई छॾी। IMF पारां जारी पतराई मूजिब पाकिस्तान में बेरोज़गारी जी शरह 6.9% ऐं महांगाई जी शरह 7.2% रही सघे थी। टैक्स नेट खे वधाइण वारियुनि कोशिशुनि में बि तेज़ी आणणु ज़रूरी आहे।

0: सीएसएस 2025 जेका हफ्तो खन पहिरियां रिज़ल्ट आई आहे। साॻियो ई खेमचंद सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में कीअं हुनजी असां रिज़ल्ट खणी आया आहियूं खेमचंद जी, ऐं उहो खेमचंद हिते फेल आहे। मुंहिंजे ॾींहुं पहिरियां वायरल बि थियो हो खेमचंद। अच्छा, खेमचंद अकेलो कोन्हे को, अलाए केतिरा खेमचंद आहिनि जेके सीएसएस पास करनि था ऐं पीसीएस में फेल था थियनि। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ते ॾिसो था त थोरा अहिड़ा माण्हू पास थियनि था जिन जो तालुक़ु कंहिं ताक़त भरी कोतनि सां थो निकिरी अचे। मिसाल तौर ते मुंहिंजे हथ में हिकिड़ी तस्वीर आहे, तव्हां ॾिसी सघो था त अॻूणो मेंबर जेको हुयो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जो, हुनजो पुटु हिन दफ़े सीसी 2024 में पास थियो। असां इहो सम्झूं था त रिज़ल्ट मैनिपुलेट कई वई आहे।
1: इलेक्शन खयो वञे माना जेको आहे रिज़ल्ट जेका डिक्लेयर कई वञे

0: 11,000 महीननि में जेके 70 पास कया आहिनि उन्हनि खे तव्हां खणी ॾिसंदव त उन्हनि खे पॉलिटिकल एफिलिएशन मिलंदी, उहे मेंबर्स या पुट तव्हांखे मिलंदा, जेके डिज़र्विंग हींअर ब्यूरोक्रेट्स आहिनि उन्हनि जा पुट मिलंदा, तव्हांखे को बि ग़रीब ॿार उन में न मिलंदो। 11,000 वेठा त हिननि खे सिर्फ़ 70 मिलिया, जेका शइ साबित थी करे त हीअ बदनवानी आहे, करप्शन आहे।
1: सर, उन्हनि मां मेजोरिटी में कैंडिडेट्स उहे आहिनि जेके कंहिं न कंहिं पॉलिटिकल एफिलिएशन सां तालुक आहे, या के को ब्यूरोक्रेट जो पुट आहे, को कंहिं एस पी जो पुट आहे, रिटायर्ड एस पी जो पुट आहे, ऐं तक़रीबन मेजोरिटी में जेके साउथ कराची मां कैंडिडेट्स बिलोंग था कनि।
2: उन 70 नौजवाननि मां बि उहे सिफारिशी, उहे ऑफिसरनि जा ॿार, उहे मेंबरनि जा पुट भाणे जा पास थिया आहिनि, घणे अंग में जंहिंखे नौकरियूं तोहफ़नि में ॾिनियूं वयूं आहिनि, सिंध जो सरमायो आहिनि, उन सां हर उनजे आवाज़ में गॾु वेंदासीं।
3: सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में पंहिंजा नवाज़ी ऐं मेरिट जी लताड़ नामंसूर, मुतासिर उमेदवारनि जी तहरीक तेज़ थी वई। गॾियल चटाभेटी इम्तिहान में शिरकत कंदड़ उमेदवारनि जो लाॻीतो ॿिए ॾींहुं बि हैदराबाद में एहतजाज। मुतासिर उमेदवारनि गुज़िरियल ॾींहुं सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जे आफ़ीस साम्हूं धरणो हयो, अॼु ॿिए ॾींहुं बि एहतजाज कयो वियो। मुतासिर उमेदवारनि जो चवणु आहे त 2024 जी गॾियल चटाभेटी इम्तिहान में मेरिट जी लताड़ कई वई, ॻाल्हि फेल थियण जी न पर सिंध जे मुस्तक़बिल जी आहे, नतीजनि जी ॿीहर जांच कराई वञे, मेरिट ऐं हक़नि जी तहफ़ लाइ जदोजहद जारी रहंदी, मुतालबा तस्लीम न थिया त एहतजाज जो दायरो वधाईंदासीं, पंहिंजनि हक़नि ख़ातिर अदालत जो दर बि खड़काईंदासीं।
4: क़ौमी अवामी तहरीक जे सरबराह अयाज़ लतीफ़ अली जो चयो आहे त
5: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
6: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद, ऐं मां अख़्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे, होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टैचिंग मशीन जे ज़रिए, जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर, फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी, होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307359210।
7: खुशखबरी, हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी, वारनि ऐं नहनि, एलर्जी, कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असुर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0300-3583-5569 0300-3583-5569।

0: It's 9:30 PM. This time check is brought to you by
1: Heme Diamond Glow Bleach Cream. Kudrati jizan sa tayar kayal. Jekade kudrati nikhar. Saaf naram ay roshan chehro. Heme Diamond Glow Bleach Cream.
2: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम. इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रोबीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में. डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो. डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो.
3: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर.

0: पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वहण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851।
1: खुशखबरी खुशखबरी हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़ रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहराबपुर वधीक राब्ते जे लाइ 0385-569-0300-33-8556-9।
2: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहराबपुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहराबपुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस

कई में दिया है होंडा कंपनिया जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटो से पैंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जै में मिले थी मोटरसाइकिल जी कार करदगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाए 03201800003

0: जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडिएंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एश ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं
2: बैंक अल हबीब रिश्ता भरोसे का
3: क्या देख रहे हो ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो
1: बाहर से भेजी गई रकम बैंक अल हबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार साथ ही मोटरसाइकिल्स स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें 578 शहरों में बैंक अल हबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं तो भाई साहब क्या समझे
2: बैंक अल हबीब रिश्ता भरोसे का
0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सां कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
4: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है सुनते रहो GFM 94

फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर ने हथियार बंद फौज पारा ऑपरेशन मारका हक की कामयाबी के पेरे साल ते कौम के मुबारकू। ISPR मौजिब एयर चीफ मार्शल ए नेवल चीफ पारा भी कौम ए फौज के मुबारकबाद पेश कई वही। मारका हक कामयाबी में साबित थी वो पाकिस्तान असराइती दिफाई सलाहियत रखा मुल्क है। मारका हक की कामयाबी कौमी एतमाद के मजबूत कर छो है। कौमी यकजहती एहतराम ए तशक्कुर से मल्हायो वेंदड़ ही डी पेशेवरानी महारत हिम्मत ए इतिहाद के पायदार जज्बे जो सबूत है। हथियारबंद फौज पाकिस्तान अवाम से गड कुलो कुल्हे में मिलाए बीठल है ए कौम से लाजवाब रिश्ते के निभाए रही है। पाकिस्तान अमन पसंद रियासत है पर हर जारियत जो भरपूर जवाब दियण भी जानू था। सदर आसिफ अली जरदारी पारा हक की जंग में कामयाबी जो एक साल मुकम्मल थियण ते पाक फौज के भेटा पेश। सदर आसिफ अली जरदारी फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर की क्यादत के हक की जंग में कामयाब ए मरकजी किरदार करा दिनों। पाक फजैया के सरबराह एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ए जवानन की महारत की भी वाखाण। सदर आसिफ अली जरदारी पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ ए पाक नेवी के जवानन ते भी फख्र है। गैर कानूनी तौर भारत के कब्जे हेठ वाला रहल कश्मीर जो मसलो टहराउन मुताबिक हल थियण घुर्जे। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की इखलाकी ए सिफारती हिमायत जारी रखंदो। अमरीका ईरान में इंदड़ हफ्ते इस्लामाबाद में बीहर गालू शुरू थियण का इम्कान। मामला तय न थियण से सदर ट्रंप की वरी ईरान के ऑपरेशन फ्रीडम प्लस शुरू कर की धमकी। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल रिपोर्ट में है त अमरीका ईरान सारिसी कदड़ धुरियन से गड़ी शुरूआती माहिदे ते कम कर रहा है जै तहत एक महीने ती गए फ्रेमवर्क ते कयो वेंदो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी अज ईरान तरफा अमरीकी तजवीजन ते जवाब मिलने लाय पुरउमीद। डोनाल्ड ट्रंप है त ईरान से मामला तय न थिया त बीहर प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस तरफ वही सकूं था। प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस में बी शयू भी शामिल हूं। पैंजो कम करे रहा हूं कें डेडलाइन ते को भी ध्यान ना है। ईरानी परडेही वजारत के तर्जुमान इस्माइल बकाई है तेहरान अमरीकी तजवीजन से गौर कर रो है नतीजे ते पौतासी त ऐलान कर छींदी। ईरानी फौज समूरन सलाहियतन से मुकम्मल तौर से तैयार है सूरत हाल ते भी नजर रखल अस। ईरान अया भी केतरा ही महीना अमरीकी नाकाबंदी बर्दाश्त कर सके तो। अमरीकी गुजे इदारे CIA ट्रंप इंतजामिया के आगाह कर छो। आलमी नशियाती इदारे मौजिब CIA पेंजी नई रिपोर्ट में जानायो है त तेहरान वधिक चैन महीनन ताई अमरीकी नाकाबंदी बर्दाश्त कर सके तो जै सबब ईरान अमरीका जो दबाव घणी हद ताई कबूल न कर रो है। तेहरान की गालियन में सुस्ती जो सबब भी इो ही है।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डीह जोशो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अवाज चेहरो बेजान डल लगे थो, हाने वक्त आहे चमकण जो। है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम सा कुदरती जुजन सा तैयार कयल, जेका दे कुदरती निखार, साफ नरम आई रोशन चेहरो। पहरे ही इस्तेमाल में फर्क महसूस करियो। है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम, तहां भी चमकायो पहजो चेहरो, जीए हुजे हीरो। है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम, चेहरे जी असल चमक जो राज।
3: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
4: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
5: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है। सुनते रहो GFM 94।